0: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸವಿಗಾನ ಈವರೆಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಹಾಸನ ಸಮಯಾಗುತ್ತಲಿದೆ 8 ಗಂಟೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आज रवाना होंगे. सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे. भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया. भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी गई. FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया. पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त का सिलसिला जारी. और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे. श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे. प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे. विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोहों में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी. यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हारमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे. हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे. आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है. भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं. हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है. प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी. सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं. लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा.
3: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है. ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है. इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है. इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है. ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है.
1: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया. केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली

0: कार्यता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
1: अमूल, इफको और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी 0 कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहां हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में आज से शुरू की जाएगी। अगले 1 महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
2: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्साकर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेस ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि इस बार अमरीकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला की हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
3: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श

0: होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
1: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
2: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
3: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
5: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथी होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है, जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
0: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
6: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टिपत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ, बाधित करो और नष्ट करो। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, एआई को जिम्मेदारी के साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी, इससे एआई आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद, सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3000 घायल और 50,000 लापता। अमर उजाला के अनुसार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म। लोकसत्य ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकेंड में 2 बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों से मिले 80 लाख रुपए। हिंदुस्तान ने मंदिर और दान

0: home, the IMD has said that conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into some more parts of North Arabian Sea, Gujarat, Madhya Pradesh, remaining parts of Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar and some parts of Uttar Pradesh and Uttarakhand during next 3 to 4 days. The Met Department has predicted heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 2 days. The weather agency also forecast heavy rainfall over Bihar, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, coastal Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and in some parts of northeast India today. On to sports. In FIH Men's Pro League Hockey, India thrashed Pakistan 7-1 at the Lee Valley Hockey and Centre in London last night. Abu Bakr gave Pakistan the lead in the first quarter, converting a penalty corner. India will now face England tomorrow. In the US Open Badminton, India's Devika Sihag and Ronak Chauhan have reached the semifinals in Fullerton, California. Devika caused a major upset by defeating third seed Riko Gunji of Japan in the straight games, winning 22-20, 21-19 in the women's singles quarterfinals. And in football, Egypt have reached the knockout stage of the FIFA World Cup for the first time after a 1-1 draw with Iran in the final Group G match. Iran's Ramin Rezaian was named player of the match. Egypt finished the group stage unbeaten and qualified as the runners-up. They will now face Australia in the round of 32. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to arrive in Seychelles in a short while on a 3-day state visit. Describes Seychelles as a valued maritime neighbour and a key partner in India's Vision Mahasagar. US Secretary of State Marco Rubio says Trump administration views India as one of United States' closest strategic partners, sharing common values and interests. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah launches cooperative-based taxi service Bharat Taxi in 14 major cities in Gujarat. Noted Tamil film actor and director K. Bhagyaraj passes away in Chennai at 73. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 2 days. And in FIFA World Cup, Egypt reaches knockout stage for the first time after a 1-1 draw with Iran. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर

0: पाकिस्तान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
1: 175 मिलियन डॉलर इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पे काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट 175 मिलियन डॉलर पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें इसके भी बातचीत होगा।
0: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है।
2: प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बना रहा है, एक ऐसा देश जिसकी वैश्विक स्तर पर फैसलों में अहम भूमिका रहती है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा।
3: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है, ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है, इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
4: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी अभी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री अमित शाह ने डेयरी उत्पादों से संबंधित अमूल सहकारी अभियान की भी सफलता का उल्लेख किया।
4: एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोग परेशान थे कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे, तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि एनसीडीसी, इपको, क्रिपको, एनडीडीबी, नाबार्ड, एनसीईएल, अमूल, ये सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
5: That is the only way that our MSME can go to the next level. And it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
0: Swasthya Mantri Jagat Prakash Nadda

0: कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य एवं औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी होने की सूचना मिली थी। परिषद ने कहा है कि परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले पूरी हो गई। कोलकाता के तारातला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और लगभग 75 फिल्मों में अभिनय किया। राज्य सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
1: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंते ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा, जिसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है, वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित CuCi थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। नई दिल्ली में आज 3 दिवसीय त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजुमदार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव से अनानास के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की संस्कृति, हस्तशिल्प तथा पर्यटन को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया

से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में जगह बना ली। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ग्रुप सी में चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और फिलीपींस के साथ है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के अंतर्गत अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर बंदरगाह पहुंच गया है। यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और भारत तथा अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। पोत अपने प्रवास के दौरान समुद्री सहयोग और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होगा। इससे पहले INS सुदर्शनी ने वर्जीनिया के नॉरफॉक में आयोजित सेल 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशेल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

मनचाहे गीत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। जैसा कि आप जान ही गए हैं, इस कार्यक्रम में जो चिट्ठियाँ भेजती हैं, पसंद भेजने की क्या तकनीक है और किस तरह से इसे भेजना है, क्या नियम है, और अब ये जान लेते हैं कि कार्यक्रम में पहला गीत किसकी पसंद से शामिल होने वाला है। तो पसंद है आप सभी की छत्तीसगढ़ डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, साथ ही सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। आप सभी की पसंद पर हम सुनवा रहे हैं। अजनबी फिल्म से एक गीत सुनिए, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मनचाहे गीत, और अगला गीत कौन सा है उससे पहले बता दें कि किसकी पसंद पर हम सुनवा रहे हैं गीत। पसंद आई है अंबेडकर चौक खुरई से राम सखी परमानंद, सौरभ गौरव, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन रोहित, छोटू डुंडुन और उनके परिवार की। और आप सभी ने पसंद किया है मुकेश की आवाज में हिमालय की गोद में फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। तो सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

मुकेश की आवाज में हिमालय की गोद में फिल्म का ये गीत आपने सुना आनंद बख्शी के बोल कल्याण जी आनंद जी का संकेत। कार्यक्रम मनचाहे गीत में अगला गीत है कन्यादान फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज में ही ये गीत है। नीरज के बोल शंकर जयकिशन का संगीत। इसकी फरमाइश भेजी है छत्तीसगढ़ देवरी भाटा पारा से गन्नूलाल रजक के आर एस अश्विनी कुमार और गणेश राम ने। साथ ही पुणे से पंकज बाड़ूदे आर्या प्रियंका बीटी बाड़ूदे और चंद्र प्रभा बाड़ूदे ने भी कन्यादान के इस गीत को सुनना चाहा है। तो आप सभी की पसंद पर सुनते हैं गीत।

कुछ इसी तरह से खत हम तक पहुंच रहे हैं, आप सभी के मनचाहे गीत कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और आपकी फरमाइशें पूरी हो रही हैं आपके नाम के साथ। तो हमारे साथियों ने अलग अलग तो खत भेजे हैं, अलग अलग जगहों से एक ही गीत की जब फरमाइश आती है तो बड़ा ही अच्छा लगता है। हालांकि अगला जो गीत है वो अलग अलग फिल्म के गीत के लिए फरमाइश आई है और ये फरमाइश हमें भेजी है गुलाबरा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से भाई राजू निखाड़े, अनिता निखाड़े, ऋषभ और सुरेश निखाड़े ने, और साथ ही बड़ा बाजार देवास से जाकिर हुसैन नजमी, तस्लीम नजमी, मुर्तजा नजमी ने भी अलग अलग फिल्म का यही गीत सुनना चाहा है। तो चलिए आप सभी की पसंद पर लता मंगेशकर की आवाज में सुनिए अलग अलग फिल्म से आनंद बख्शी के बोल से सजा ये गीत जिसे राहुल देव बर्मन ने संगीत से सजाया।

लता मंगेशकर की आवाज में अलग अलग फिल्म का ये गीत आपने सुना, राहुल देव बर्मन की तर्ज आनंद बख्शी के बोल। कार्यक्रम मनचाहे गीत में अगला जो फरमाइशी गीत है वो भाभी फिल्म से है और इस गीत के लिए फरमाइश भेजी है आप सभी ने सांगवड़े कोल्हापुर महाराष्ट्र से जिनराव, पृथ्वीराज ऋतुराज पाटिल, प्राची प्राजक्ता प्रगति पाटिल, आप सभी की फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं भाभी फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा, चित्रगुप्त का संगीत।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत और कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम आ चुके हैं। कार्यक्रम का अंतिम गीत किनकी पसंद पर हम सुनवाने वाले हैं आपको बता दें, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकी पवार, मोहम्मद हसनैन पवार, बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनिता गंगराड़े, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराड़े, ग्राम छैगांव देवी जिला खंडवा से अशोक कुमार वाघे, वंदना वाघे, उपेंद्र वाघे, झवर वाघे, तनुश्री आरोही और कान्हा वाघे। आप सभी ने फरमाइश भेजी है वंदना फिल्म के गीत की। आप सभी की फरमाइश पर ये गीत सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज, असद भोपाली के बोल, रवि का संगीत।

वंदना फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, असद भोपाली के बोल रवि का संगीत। इसके साथ ही आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इसके साथ अपनी दोस्त नेहा शर्मा को भी दीजिए इजाजत। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। आज के इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं कटीला रास्ता, इस नाटक का पहला भाग। ये नित्यमूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नैत पाते का हिंदी रेडियो रूपांतर है। रूपांतर किया है ए शौर्य राजन ने। निर्देशक हैं वीपी दीक्षित बटुक।

0: डॉक्टर रतनगिरी, मेरी ओर से हार्दिक बधाइयां।
1: भारती,
0: अब मैं केवल आपकी भारती नहीं हूँ, समझे? अब मैं हूँ डॉक्टर भारती, MBBS।
1: फिर भी वो
0: जी, मैं आपके गांव की हम पेशा लेडी डॉक्टर हूँ।
1: भारती सुनो तो,
0: अब छिपाओ दोराव अच्छा नहीं लगता डॉक्टर साहब। आपकी प्रेयसी और भावी पत्नी डॉक्टर उमा देवी मेरी परम प्रिय सखी हैं, कम से कम इस बात को मत भूलिएगा।
1: ओ भारती, कृपा करके मेरी बात तो सुनो।
0: उसकी कोई जरूरत नहीं, सब जानती हूँ। मंगल ललूर गांव के बड़े रईस श्रीमान मरुद नायकम के इकलौते सुपुत्र हैं आप, और मद्रास शहर के बहुत बड़े व्यापारी की इकलौती सुपुत्री है डॉक्टर उमा देवी। दोनों का शुभ।
1: लेकिन भारती, इसमें इसमें तुम्हारी भी गलती है।
0: मेरी गलती? बातें तो बड़ी ऊंची की थी आपने, कहां गई वो सब बातें?
1: मैं भूला नहीं हूं, ये सही है। हमने निश्चय किया था कि हम एक साथ पढ़ाई पूरी कर जीवन साथी बनकर गांव लौट आएंगे और जनता की सेवा करेंगे।
0: लेकिन हमारा वो निश्चय, वो संकल्प अब कोरा सपना हो गया है।
1: कोरा सपना नहीं हो गया भारती, समय तथा युग के अनुसार थोड़ा बदल गया है बस।
0: समय और जमाने के मुताबिक पैंतरे बदलना, रंग बदलना क्रिकेटों का काम है, पढ़े लिखे उपाधिधारी और विचारवान व्यक्तियों का नहीं है, समझे?
1: इसीलिए तो मैं विदेश जाकर उच्चतम शिक्षा पाने की कोशिश में।
0: हाँ हाँ, आप उसी कोशिश में हैं, मैं जानती हूँ आपकी कोशिशें। भावी ससुर साहब की सहायता से विदेश जाकर उच्चतम शिक्षा पाने वाले हैं आप, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए।
1: भारती, भारती तुम मुझे अब भी समझने की कोशिश नहीं कर रही हो।
0: खूब समझ गई हूँ आपको डॉक्टर साहब। विदेश जाकर पढ़ना और बहुत बड़े रईस की इकलौती बेटी का जो लेडी डॉक्टर भी है पति बनना, ये दो बड़े लक्ष्य आपकी आंखों पर पट्टी बांध चुके हैं, की हुई प्रतिज्ञाओं को भुलवा चुके हैं।
1: भारती, केवल प्रेम को लेकर जिंदगी नहीं बना करती, जिंदगी बसर करने की बुनियाद है पैसा। प्रेम के साथ पैसा भी हमें चाहिए।
0: वाह, केवल प्रेम को लेकर जिंदगी नहीं बन सकती, खूब कहा आपने। दौलत की बुनियाद पर प्रेम का दुर्ग खड़ा करना चाह रहे हैं आप, कीजिए, शान से कीजिए।
1: भारती देखो, तुम्हारी पीड़ा समझ रहा हूं मैं। हम दोनों की शादी नहीं हो पाएगी, इसी बात से तुम बहुत दुखी हो और मुझ पर अपना क्रोध उतार रही हो। देखो भारती, समझदारी इस बात में है कि हम कैसे अपनी जिंदगी बेहतर बना पाते हैं। जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश में रहना और उसी के अनुसार सोचना कोई गलत काम नहीं है।

0: अच्छा तो ये है कि हम बीती बात भूल जाएं, वर्तमान के बारे में सोचें और भविष्य पर दृष्टि रखें।
1: अतीत को भूल जाएं, वर्तमान के बारे में सोचें, ठीक ही है। होशियारी से जिंदगी गुजारने की सोचना तो जरूरी है, क्यों ना सोचा जाए।
0: मुझे खुशी है कि तुम समझने लगी हो अब।
1: जी हाँ, समझने लगी हूँ।
0: रियली?
1: हाँ, जिंदगी चाहे जैसे नहीं गुजारनी है, गुजारनी है अपनी इच्छा और अपने लक्ष्य के अनुसार। जीवन के इस सच्चे सिद्धांत को समझ गई हूँ मैं।
0: भारती?
1: सिर्फ भारती नहीं, आई एम डॉक्टर भारती। डॉक्टर अदनगिरी, आपके शानदार जीवन और उज्जवल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं। मुझे आज्ञा दीजिए, बाय बाय।
2: भारती, ये क्या बात है?
1: मेरी शादी में नहीं आ रही हो? तुम्हारा बाहर जाना इतना जरूरी है क्या? अब क्या करूं उमा, मेरी इच्छा तो यही है कि तुम्हारी शादी के मौके पर जरूर रहूं, लेकिन कर्तव्य को भी नहीं डाला जा सकता ना।
3: हाँ हाँ, बढ़िया ही कर्तव्य निभाने वाली। तुम्हारे गांव में ऐसा क्या कर्तव्य आ पड़ा जिसे निभाना जरूरी हो गया, बताओ तो जरा।
1: भविष्य में वो तुम्हारा भी गांव होगा उमा। ससुराल का गांव पीहर से कम नहीं है, और फिर तुम्हारे पतिदेव तो मेरे गांव के हैं।
3: तो तुम उन्हें जानती हो?
1: क्यों नहीं, भली प्रकार जानती हूँ। मैं उसी गांव की हूँ और मेरे मामा वहां रहते हैं। अच्छा ये बताओ, हनीमून के लिए कहाँ कहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया तुमने?
2: अब क्या बताऊं भारती, पापा ने आगे की पढ़ाई के लिए सारा इंतजाम करा दिया है। उनके व्यापार उद्योग क्षेत्रों के मित्र तो सब जगह फैले हुए हैं ना।
1: तब तो विदेश में आगे की उच्चतम शिक्षा का इंतजाम करा दिया होगा। ठीक है, उसे ही एक तरह से हनीमून समझो।
2: अब शादी में सिर्फ 10 ही दिन तो रह गए हैं, तुम इस बीच बाहर जाने का इरादा छोड़ क्यों नहीं देती?
1: अब मेरी विवशता है उमा, हमारे गांव के डॉक्टर बहुत बूढ़े हो चुके हैं, उनका काम चलाने के लिए एक डॉक्टर की जरूरत है। उनका कार्यभार संभालने के लिए किसी ना किसी को तो जाना ही है, मैं ही वो काम संभालने जा रही हूँ।
2: तुम भी खूब हो भारती, शहर के डॉक्टर गांव में जाने से कतराते हैं, धंधा चले ना चले साइन बोर्ड लगाकर बैठ जाते हैं शहर में, और एक तुम हो गांव जाकर सेवा करने पर तुली हो।
1: इसीलिए तो जा रही हूँ, वरना आप लोग गांव चली जाओ कहकर भगा देंगे तो।
2: लेकिन फिर भी सिर्फ 10 दिनों की ही तो बात है।
1: आई एम सो सॉरी उमा।
2: ओफो भारती, तुम बड़ी हठी हो।
1: कुछ बातों में औरतों का हठीलापन अच्छा ही होता है और जरूरी भी है। अच्छा उमा, तुम्हारे सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए मेरी बहुत बहुत बधाइयाँ।
2: शुक्रिया।
1: मुझे आज्ञा दो।
2: तुम्हारे हट के आगे और चारा ही क्या है भारती।

0: भारती, उस हवाई जहाज को क्यों ताकती रह गई? खोई खोई सी क्यों खड़ी हो? अस्पताल नहीं जाओगी?
1: अभी जाती हूँ मामा, नर्स नागमणि के इंतजार में हूँ।
0: बुरा मत मानना भारती, तुम बड़ी डॉक्टर हो, तुम्हारे इंतजार में लोग रहे ये तो ठीक है, पर किसी और के इंतजार में तुम रहो ये जचता नहीं।
1: ये बात नहीं है मामा जी, मैं अपने काम की जरूरत के लिए इंतजार करती हूँ, किसी व्यक्ति के इंतजार में नहीं हूँ।
0: तुम ठीक अपने पिता की तरह हो, उन्हें राष्ट्र की स्वाधीनता, राष्ट्रीय संग्राम आदि के बारे में जितना लगाव था उतना ही लगाव तुम्हें अपने कर्तव्य के बारे में है। एक तरह का नशा ही चढ़ा हुआ था उन्हें, अब वैसा ही नशा तुम पर सवार है।
1: वो नशा नहीं था मामा जी, वो भक्ति थी। नशा तो जंगली नाले की तरह है, जो एक दिन उमड़ आता है तो दूसरे दिन उतर जाता है, पर मामा जी भक्ति ऐसी चीज नहीं है, वो तो सदा बहते रहने वाली धारा है।
0: मैं क्या जानूं बेटी, मैं ठहरा गंवार, खेत जोतकर रोजी चलाने वाला।
1: ऐसी बात नहीं है मामा जी, आपकी मेहनत और लगन की ही मेहरबानी है कि मुझे अनाथ लड़की को आपने पाल पोस कर बड़ा किया और पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया।
0: वो मेरा वचन पालन था जो मैंने अपनी बहन को दिया था, स्वतंत्रता आंदोलन में कूट पड़ते वक्त तुम्हारे पिता

0: माता की उम्र 22 साल की थी। शादी के कुछ ही महीनों की बात है।
1: और माता जी?
0: उस समय यानी 30 साल पहले तुम्हारी माँ मेरे साथ रहती थी। तुम्हारे पिताजी जेल में थे।
1: फिर क्या हुआ?
0: देश के स्वतंत्र होने के बाद ही मैं घर में घुसूंगा, तब तक मेरे लिए घर गृहस्थी कुछ नहीं है, यही कहते थे तुम्हारे पिता।
1: और आजादी मिलने के बाद?
0: तुम्हें जन्म देने के बाद तुम्हारी माँ अपनी आजादी की खोज में चल बसी। शायद अधेड़ उम्र में प्रसव होने की वजह से यह हालत हुई होगी।
1: बेचारी दुखियारी माँ।
0: उसी व्यथा में तुम्हारे पिताजी भी खुल खुल कर मर गए। वे तुम्हारी माँ को बहुत प्यार करते थे।
1: स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में जो जमीन उन्हें भेंट की गई थी, उसको लेने से तो पापा जी ने इनकार कर दिया था ना?
0: और क्या, टुकड़ा भर जमीन मिलेगी इस अरमान से थोड़े ही उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। खैर उस बात को जाने दो, मैं तो दूसरी ही बात कहने आया था, भूल ही गया।
1: क्या बात है मामा जी?
0: हाँ याद आ गई। इस बात का ख्याल रखना बेटी, यहाँ के सरपंच मरूद नायकम, बड़े मीरासदार रईस कुमार सामी जैसे लोगों का मन रखना भी जरूरी है। उनसे झंझट मोल लेना ठीक नहीं होगा। इन लोगों के सहयोग से ही ये आम अस्पताल बना है और इन्हीं के सहारे ये चल रहा है।
1: काफी देर हो गई है, नर्स नागमणि अब तक नहीं आई। मैं चली जाती हूँ मामा जी।
0: ठीक है, मेरी बात याद रखना, तुम आखिर एक लड़की हो, ये मत भूलना।
1: हाँ हाँ आप चिंता

0: डॉक्टर साहब, 4 दिनों से बुखार लगातार चल रहा है, बहुत बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। ज़रा कह दीजिए बिना पानी मिलाए अच्छी दवा देने।
1: मिक्सचर वाली दवा तो पानी के बिना नहीं बन सकेगी। टिकिया लेंगे आप? ऐसा ही लिख कर दे देती हूँ, दुकान से खरीद लीजिएगा।
0: डॉक्टर जी, पैसा नहीं है डॉक्टर जी।
1: कोई बात नहीं, ये लीजिए पैसे।
2: डॉक्टर साहब, उस आदमी को दवा मत दीजिए, वो हमारे रईस जादे कुमार स्वामी जी के दुश्मन का आदमी है।
1: तुम आ गई नागमणि, इतनी देर कैसे हुई? इस आदमी को दवा देने से रोक क्यों रही हो?
2: एक एक करके पूछी ना।
1: कहो तो।
2: वो अपने पंचायत प्रेसिडेंट है, उनके घर जाना पड़ा, उनको बुखार है।
1: ठीक है, फिर
2: आपको तुरंत ले आने को कहा।
1: क्यों, वो यहाँ नहीं आ सकते?
2: इस गांव का यही दस्तूर है, आप नहीं जानती बड़े लोग अस्पताल में कैसे आएंगे।
1: अफसोस, बुखार को इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि वो बड़े और छोटे लोगों को पहचान सके।
2: आप नई आई हैं, इसीलिए यहाँ के रीति रिवाज नहीं जानती, वरना ऐसा नहीं कहती।
1: मुझे अपने इस अस्पताल से ही मतलब है, मैं और कुछ नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती हूँ।
0: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मैं चलूं?
1: हाँ, जा सकते हो भाई, पर देखो वो टिकियां जरूर खरीद लेना, रोज सुबह और शाम को खाना भोजन के बाद।
0: आप जुग जुग जिए डॉक्टर साहब, जुग जुग जिए।
2: डॉक्टर साहब, वो आदमी हमारे रईस साहब के दुश्मन का नौकर है, इसीलिए।
1: मरीज का ना कोई दुश्मन होता है ना दोस्त, डॉक्टर के लिए भी यही बात है।
2: ओफो, आप अभी छोटी उम्र की हैं, समझती नहीं हैं। मैं अनुभवी औरत कह रही हूँ, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। अब तक कई डॉक्टर आ चुके हैं, जा भी चुके हैं।
1: नागमणि, तुम एक नर्स हो, तुम्हारा काम दूसरों को धमकाना नहीं है, समझ रही हो?
2: लगता है तब तो आप प्रेसिडेंट के घर नहीं जा रही हैं।
1: प्रेसिडेंट हो या उससे भी बढ़ चढ़कर कोई और, अस्पताल उनके यहाँ नहीं जाएगा। अगर वो चाहें तो किसी बड़े डॉक्टर को घर बुला लाएं, ऐसी औकात है उनकी।
2: याद रखिए, ये अस्पताल उन्हीं की मदद से चल रहा है।
1: नागमणि,
2: जाकर यही कह दूं उनसे कि डॉक्टर साहब का कहना है आप किसी बड़े डॉक्टर को बुला लाएं, अस्पताल आपके घर नहीं आएगा।
3: वेदाचलम, लगता है भारती को गांव का कायदा समझ में नहीं आया है, नई उमंग है ना। मैंने सुना है नर्स नागमणि को नौकरी से हटाने की बात कर रही है, किस भुलावे में है ये?
4: नायकम जी, मैं समझा देता हूँ उसे, इस बार माफ कर दीजिए।

0: आखिर तो आपकी दया माया से बना हुआ अस्पताल है ये।
1: नर्स हो या डॉक्टर, उसे नौकरी में रखना हमारी मर्जी पर है, समझे? नागमणि की कितने ही सालों पुरानी सर्विस है, उसे भर्ती बर्खास्त कराएगी, ये मजाल है उसकी।
0: नायकम जी, ये अपने बाप पर गई है, उसी की तरह ये भी थोड़ी तेज तबीयत की है।
1: तब इसकी भी उसके ही जैसी हालत होगी। मेरे ही अस्पताल में काम कर रही है और मेरे ही घर आकर इलाज नहीं करेगी। ये सब नहीं चलेगा यहाँ।
2: चिंता ना कीजिए, मैंने अपना इस्तीफा लिखकर दे दिया है।
0: भारती, तुम?
1: अच्छा, तो ये बात है।
0: पर इस्तीफा क्यों दे रही हो बेटी?
2: क्योंकि इसी तरह मैं अपने अंतःकरण के अनुसार काम कर सकती हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ।
0: पर तुम्हें ये भी तो सोचना चाहिए था कि ये गांव के बड़े आदमी हैं।
2: मामा जी, मैं छोटी हूँ ना, बहुत छोटी हूँ, इसीलिए बड़े आदमियों के साथ सुलह कर चलना मुझे नहीं भाता। तभी तो इस्तीफा देकर बाहर आ गई हूँ।
1: सुना आपने?
0: इसके लिए मुझे खेद है साहब, मैं इस लड़की को समझा दूंगा।
1: ठीक है, देख लेंगे इसे भी। इस वक्त तो हम चले जाते हैं।
0: भारती, भारती, तुमने नागमणि के मामले में ज्यादती की है, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें।
2: चुपचाप अन्याय को देखते रहना मेरे बूते की बात नहीं है मामा जी।
0: बिटिया, मैं बूढ़ा हो चला, मरीज भी हूं, इस दशा में गांव वालों से दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं। ओफ ओह, पता नहीं ये क्या कर बैठे।
2: दुष्टों धूर्तों के पल्ले ना पड़ूं, अपनी रक्षा कर सकूं, इतना होश मुझे है। आप चिंता छोड़िए मामा जी।
0: तुम भी अजीब लड़की हो। ओह, अरे सीना दर्द कर रहा है।
2: क्या, क्या हुआ मामा जी? मामा जी, क्या हुआ? सीने में दर्द? अभी आती हूँ, थोड़ा अपने को संभालिए। अभी आई।
0: पानी, थोड़ा पानी, पानी। पसीना छूट रहा है।
2: ले जाइए, ये लीजिए पानी। दिल के दौरे के कारण इनकी हालत है। मामा जी, एक इंजेक्शन लगा देती हूँ, आप आराम से सो सकेंगे।

0: हेलो डॉक्टर भारती।
1: अरे उमा तुम अचानक यहाँ कैसे टपक पड़ी?
0: देख लो
1: क्या ससुराल की भूमि के दर्शन करने चली आई हो।
0: अरे भाई पहले आसमान से नीचे तो उतरो।
1: गाड़ी को तुम आसमान कहती हो। ये लो उतर आई तुम्हारी धरा पर। अरे ए उमा भैया अट्टहास कैसा? दे भाई पागलों की तरह हंसी चली जा रही हो, आखिर बात क्या है?
0: तुम्हारा रूप देखकर पागल हुई हूँ। क्या बढ़िया वेश बना रखा है तुमने, एक मामूली वॉयल की साड़ी, हाथ में ये छोटा सा बक्स, सीधा कंघी किया हुआ सिर। वाह ठेठ देहाती दाई माँ लगती हो।
1: ठीक ही तो है, लेडी डॉक्टर आखिर क्या है, दाई माँ का ही तो दूसरा रूप है।
0: तुम अपनी बात कभी काटने भी देती हो? बात बात पर काटने दौड़ पड़ने की तुम्हारी आदत गई नहीं आखिर।
1: मजाक मजाक छोड़ो उमा। अच्छा पहले ये बताओ तुम कैसे इधर आई? जानम्मा
2: जी
1: ऐसा करो तुम ये बक्स लेकर घर चले जाओ। हाँ मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी।
2: जी बहुत अच्छा।
0: अच्छा पहले ये बताओ कि ये जानम्मा कौन है, तुम्हारी नई नर्स साहिबा?
1: हाँ उमा मैंने अस्पताल से इस्तीफा देकर अपनी अलग डिस्पेंसरी खोल ली है।
0: वो सब तो मैं पहले ही सुन चुकी हूँ।
1: ये जानम्मा उसी डिस्पेंसरी की नई आया है और इसी के साथ नया कंपाउंडर भी रखा है, अल्लाह बख्श।
0: अच्छा अच्छा
1: भाई दोनों ही जान लड़ाकर काम करते हैं, ये नए लोग पुराने लोगों से ज्यादा वफादार हैं। अस्पताल के मरीजों की सारी भीड़ को ये दोनों ही संभालते हैं।
0: तुम्हारे मामा जी का क्या हाल है, तुम्हारी नई डिस्पेंसरी से बड़े खुश होंगे वो?
1: खुश तो हैं उमा, पर बेचारे हृदय रोग से पीड़ित हैं, दिन पर दिन निर्जीव से होते जा रहे हैं, और फिर दूसरे मरीजों के साथ उन्हें भी संभालना होता है, और यहाँ की कमी कमजोरियों को तो तुम जानती हो।
0: भारती तुम सचमुच बड़ी ग्रेट हो, वरना इस मनहूस देहात में बिना किसी सुविधा सहूलियत के कैसे रह पाती, इतना बड़ा

0: काम संभालना तुम्हारा ही हौसला है।
1: ऐसे मनहूस देहात मत कहो उमा,
0: तो
1: ये मेरी जन्मभूमि है,
0: बस
1: मैं इसकी कर्जदार हूँ। इस भूमि की सेवा से मुझे हौसला मिला है।
0: तुम जैसे तीन चार पागल जने और मिल जाएं।
1: अच्छा ये सब रहने दो, ये बताओ तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे पति महोदय क्या कर रहे हैं?
0: मैं आराम से वक्त काट रही हूँ।
1: हाँ अरे उमा ये क्या कह रही हो, विदेश जाकर पढ़ाई हो और?
0: मैं कहाँ पढ़ी थी, उन्होंने ही पढ़ा था, प्रशिक्षण पाया था। मैं सिर्फ साथ देने गई थी, डिग्री ले आई बस।
1: डिग्री ले आई हूँ, ऐसी डींग मारने भर से कोई फायदा नहीं है।
0: क्या बताऊं भारती, मेरे ससुराल वालों को भी मेरी पढ़ाई व नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं है।
1: उमा पहले तुम्हारा तो अपना एक इरादा होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए। अगर तुम्हें पैसा कमाने से कोई मतलब नहीं है तो सेवा भाव से ही तुम्हें इसमें लग जाना चाहिए था।
0: लेकिन मेरे पति भी ये चाहते हो तब तो।
1: ये बात है, डॉक्टर रतनगिरी की ये मानसिकता, सचमुच वो बधाई के पात्र हैं। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम्हारे पतिदेव डॉक्टर रतनगिरी आजकल क्या कर रहे हैं?
0: अरे तुम्हें नहीं मालूम, वो बहुत मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट हो गए हैं। मद्रास में बहुत बड़ा नर्सिंग होम बनवा लिया है, खूब प्रैक्टिस चल रही है। वो
1: तुम्हारी बात में एक छोटा सा सुधार है,
0: क्या?
1: बनवा नहीं लिया है, तुम्हारे पिताजी ने बना कर दिया है।
0: तुम आकर देखोगी तो दंग रह जाओगी, कितनी नई नई मशीनें, औजार, साधन सामग्रियां हैं। इतना सजाया दजाया गया है कि देखकर तबीयत खुश हो जाती है।
1: क्यों ना हो, बहुत बड़े स्पेशलिस्ट है ना।
0: अक्सर विदेश घुमाते हैं, हृदय रोग चिकित्सा संबंधी विश्व विशेषज्ञों की परिषदों, सभाओं व बैठकों में भाषण देने जाते हैं। बड़ा नाम है उनका।
1: हाँ हाँ जाना ही चाहिए, तुम साथ नहीं जाती? अच्छा क्या आजकल भी गए हुए हैं? तुम नहीं गई?
0: मैं जाने की स्थिति में नहीं हूं।
1: अरे कॉन्ग्रेचुलेशन सुमा, मेरी प्यारी उमा माँ बनने वाली है।
0: चुप रहना, कोई सुन लेगा तो मजाक उड़ाएगा। घर में चलो ना, नाश्ता करके जाना।
1: नहीं उमा प्लीज, देखो पहली बात तो यह है कि मैं डिलीवरी केस अटेंड करके आई हूँ, अब सब लोग छुआछूत मानेंगे, अंदर नहीं आने देंगे। और दूसरी बात, तुम्हारे पतिदेव के आने के बाद ही आऊंगी, नव दंपति को एक साथ देखना ही अच्छा है।
0: जो जरूर आना, मेरी शादी में तो बहाना बनाकर चली गई थी।
1: अरे अब क्या बहाना बनाना है, जरूर आऊंगी उमा जरूर आऊंगी। अच्छा मैं चलती हूँ।
0: ओके बाय बाय।

0: बाप रे बाप, बारिश तेज होती जा रही है। डिस्पेंसरी के बंद होने के बाद इसको भी बंद हो जाना चाहिए।
1: क्यों कंपाउंडर साहब, अब तक घर नहीं गए आप?
0: कैसे जाएं डॉक्टर साहब, आप रोज बरोज रहम धर्म की कमाई ज्यादा हासिल कर लेती हैं, लिहाजा बरसात भी ज्यादा होती है।
1: आप भी खूब है, आपको हर बात में मजाक सोचता है।
2: अरे वो तो कोई लड़की दौड़ी आ रही है।
3: हाँ, अरे लगता है कहीं कुछ गड़बड़ी है।
1: बारिश में भीगती हुई दौड़ी चली आ रही है, कहीं कोई मुसीबत तो नहीं खड़ी हो गई?
3: अरे अरे, ये तो हमारी ग्राम सेविका शकुंतला है।
1: शकुंतला, क्या बात है बताओ।
4: डॉक्टर साहब मुझे बचाइए, मेरा जीवन बर्बाद करके।
3: अरे अरे, ये तो बेहोश हो गई। हाय, इसकी तो साड़ी भी फटी हुई है, लगता है किसी ने इसके साथ ज्यादती की है।
1: अब पहले इस लड़की को अस्पताल के भीतर ले चलो, जल्दी करो।
3: चलो चलो
1: कंपाउंडर, वो बक्स ले आओ जल्दी से।
5: बेटी, इस लड़की को पनाह देने से तुम खामखा झंझट मोल लोगी।
1: मामा जी, मैं इसको सिर्फ पनाह ही नहीं दे रही हूँ, इसे बर्बाद करने वाले को सजा भी दिलाकर छोड़ूंगी।
5: भगवान के लिए चुप रहो, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है।
1: मुझे किसी का डर नहीं है।
5: बेटी, कभी कभी सच्चाई को झूठ के सामने चुप हो जाना पड़ता है।
1: ऐसी बात नहीं है मामा जी, सच्चाई की जबान साफ सुथरी और नेक होती है, वह दूसरी है कि वो देर में खुलती है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि झूठ के आगे सच्चाई गूंगी हो गई है।
5: लगता है इसके साथ
1: बड़ी भयावह स्थिति हुई है। ये बेचारी पड़ोस के गांव से लौट रही थी, बीच रास्ते में 3-4 गुंडों ने इसे घेर लिया और उठा कर ले गए।
5: आगे मत कहो,

0: प्राणों में एक आग सी लग जाती है, दिल दहल उठता है।
1: मामा जी, आपने दवा खाई थी? कल से आपका दिल दर्द कर रहा था ना, अब कैसे आप?
0: अब ठीक हूँ बिटिया, मैं काफी सावधानी बरतता हूँ।
1: मामा जी, अन्याय को आखिर मात खानी ही पड़ेगी।
0: भारती, तुम लड़की हो फिर अकेली भी हो।
1: मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा साथ देने वाला बड़ा शक्तिशाली है, वो है भगवान। और फिर मेरी चेतना भी मेरे साथ है, आप भी तो हैं। इतना ही नहीं मामा जी, गांव के गरीब लोग भी मेरे साथ हैं।
0: सुनने में तो सब अच्छा है, पर हकीकत यह है कि पूंजी और प्रभाव के धनी लोगों के सामने हम तिनके के बराबर हैं। मैं कहता हूं ये तुम्हारे बस की बात नहीं है।
1: क्यों नहीं है? डॉक्टर की हैसियत से मैं गवाह हूं, मैंने उसका इलाज किया है।
0: ये न भूलो कि तुम मर्द नहीं हो।
1: काश मैं मर्द होती।
2: डॉक्टर अम्मा!
1: कोई दरवाजा खटखटा रहा है।
2: डॉक्टर अम्मा!
1: देखती हूँ कौन है।
0: रात के 10 बज चुके हैं।
2: डॉक्टर अम्मा!
1: अरे नागमणी, तुम क्या बात है? मुझे बेचैन क्यों हूँ?
2: मुझे माफ कर दीजिए, अभी मेरे साथ चलिए, मेरी छोटी बहन की जान बचाइए। डॉक्टर अम्मा, आपको बहुत पुण्य होगा, दया कीजिए।
1: तुम्हारी बहन को अचानक क्या हो गया है?
2: आपके पैर पड़ती हूँ, बाहर बैलगाड़ी तैयार खड़ी है, मेरी बहन प्रसव पीड़ा से तड़प रही है। आप चलकर नहीं देखेंगी तो वो बचेगी नहीं, बहुत नाजुक हालत है, जल्दी चलिए माई जी।
1: लगता है बहुत सीरियस केस है। मामा जी, मैं भी आती हूँ, एक सीरियस केस है।
0: जानम्मा, अल्लाह बख्श को भी साथ लेती जाना।
2: उनकी जरूरत नहीं है, मैं खुद नर्स हूँ, मैं संभाल लूंगी। आइए डॉक्टर अम्मा,
1: जल्दी चलो। नागमणी, आइए चलो।

0: नागमणि, ये हम कहाँ जा रहे हैं? तुमने तो कहा था कि घर नजदीक ही है।
1: चुप रहो, बकझक करने की कोई जरूरत नहीं है।
0: क्या कहा?
1: मुझे डराती हो?
0: तब तो तुमने झूठ बोलकर मुझे धोखा दिया है। नागमणि, ऐसा क्यों किया तुमने?
1: जल्दी ही सब मालूम हो जाएगा।
0: छी, हंसती है, मक्कार कहीं की। ए, गाड़ी रोको। अरे रोकता है कि नहीं रोकता?
2: ए नागमणि, धमकाती है, जानती है हम कौन है?
1: बेचारी डर जाएगी। आप इस तरह मत हंसिए, बता दीजिए कौन है।
2: अरे हम हैं, हम इस गांव के बड़े रईस कुमार सानी।
0: अच्छा, वो बहुत बड़े रईस ज़ादे आप ही हैं?
2: क्या कहा?
0: यही कि गांव की बेसहारा लड़कियों को बर्बाद करने वाले सूरमा आप ही हैं। एक को पकड़ने के लिए आपने गुंडों को भेजा, अब मुझे पकड़ने इस औरत जात को भेजा है। शर्म नहीं आई आपको?
2: डॉक्टर ने ज्यादा उछल कूद मत कर, हम गांव के बाहर आ गए हैं। ये देख, सामने नाला बह रहा है।
0: ये धमकी सब किस लिए दे रहे हैं आप?
2: तू पुलिस केस कराने वाली है ना, उससे बाज आ जा बस।
0: शकुंतला पर किए जुल्म की बात कर रहे हैं आप?
2: हाँ वही। और अगर तू बाज नहीं आएगी ना, तो समझ ले उस लड़की जैसी हालत तेरी भी होगी।
0: इससे पहले ही मेरे हाथ करारा जवाब दे देंगे।
2: अरे इस नाले में बहा दी जाएगी।
0: नाले के पास ही अगर मेरे रक्षक छिपे हुए हो तो? अरे कोई है?
3: अरे भागिए भागिए मालिक, ऐसा ना हो कहीं लेने के तेरे।
0: कायर कहेंगे, छूट मूट का शोर मचाते ही भाग गए। अपनी गाड़ी तक ले जाने का होश नहीं रहा।
4: अभी आपने सुना नाटक कंटीला रास्ता का पहला भाग। ये नित्यामूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नैत्य पाते का हिंदी रूपांतर था। रूपांतरकार ए शौर्य राजन और इसके निर्देशक थे वीपी दीक्षित बटुक। यह हमारे केंद्रीय नाट्य एकांश दिल्ली की प्रस्तुति थी। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे कल इसी कार्यक्रम में दिन में 3:30 बजे। अब नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
5: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
6: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं।

0: ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: Camera, action!
1: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गीतकार सुधाकर शर्मा से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज स्टूडियो में हमारे सामने एक खास मेहमान बैठे हैं, फिल्मी दुनिया के जाने माने गीतकार। जी हाँ, आप हैं सुधाकर शर्मा, और जिन्होंने 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 5,000 गाने अब तक लिखे हैं, और भी न जाने कितना काम इस फिल्मी दुनिया में उन्होंने किया है। तो आज उन्हीं से जानेंगे उनकी दुनिया का सफर। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधाकर जी।
3: मंदाकिनी जी नमस्कार। मेरे सभी उन श्रोताओं को जिन्होंने मेरे गानों को सुन सुन के मुझे विविध भारती के स्टूडियो तक पहुंचा।
2: तो सबसे पहले हम तो यही जानना चाहेंगे कि आप कैसे हैं।
3: मंदाकिनी जी, हुआ ये कि हर आदमी अपने बचपन से प्रेरित होता है किसी भी काम के लिए। तो मैं गांव में रहता था, पलवल के पास मेरा गांव है। वहां हमारे एक चाचा थे, वो हमेशा ट्रांजिस्टर बगल में लटका के रहते थे। बिना ट्रांजिस्टर उनको आप देख ही नहीं सकते कभी। तो वहां गाने बजते थे, जब आता था अनाउंसमेंट कि आप शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध किया हुआ, हसरत जयपुरी का लिखा हुआ ये गीत सुनिए, तो मुझे वो साउंड जो है ना, ऐसा लगता था कि काश मैं भी कुछ ऐसा कर पाऊं कि मेरा भी ऐसे नाम आए कि अब आप शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध किया हुआ, सुधाकर शर्मा का लिखा हुआ गीत सुनिए। तो ये प्रेरणा स्रोत बना मेरा आपका ये माध्यम, और मैं वहां से सफर तय करने के मतलब तैयारी में मुंबई तक आया।
2: ये 1973 में, 1973 में हरियाणा से मुंबई आ गए?
3: नहीं, मैं हरियाणा से दिल्ली में था।
2: हाँ।
3: दिल्ली से मुंबई आया।
2: अच्छा।
3: मेरे पिताजी दिल्ली में टीचर थे, तो मैं दिल्ली में ही रहता था, और वहां से मैं यहाँ आया। और यहाँ आने की भी एक अलग कहानी है। मैं कोई सोच समझ के नहीं आया, मतलब मुझे आना था ऐसा मेरे मन में था, लेकिन कब जाऊंगा और कैसे जाऊंगा इसकी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि उतने पैसे मेरे पास नहीं थे और आने का कोई सोर्स भी नहीं था। मेरे एक दोस्त हैं विजय त्यागी
2: जी,
3: वो धर्म जी के फैन थे, तो उसने बोला यार मुझे तो धर्मेंद्र बनना है, तो उसने बॉडी वॉडी भी अच्छी बनाई। अच्छा। थी, उसका आने का प्रोग्राम बना और मेरे को बोले कि चल तू भी चल, और मैं उनके साथ आ गया, और यहाँ बम्बई में बम्बई का होके रह गया। मैं पहली बार जब यहाँ आया देहरादून ट्रेन से उतरा, देहरादून एक्सप्रेस दादर, तो मेरे साथ मतलब पहली घटना ऐसी हुई कि हम तीन थे,

0: जो तीसरा था वो हमारा गाइड था,
1: अच्छा, तीन दोस्त आए थे
0: तीन
1: आप?
0: दोस्त आए थे,
1: हाँ
0: मेरे दोस्त का वो दोस्त था।
1: अच्छा।
0: तो उसने बोला कि मैं जहां रहता हूं वो बहुत बड़ी जगह है और उस जगह पे ये नहीं जा सकता,
1: कौन आप?
0: सुधाकर, कि
1: अच्छा,
0: बोला ये तो शक्ल से ही चोर लगता है, तो वहां कुछ कुछ हो गया।
1: अरे
0: तो मैं दादर स्टेशन प्लेटफार्म पे रात को सोया, ये लोग दोनों चले गए। मैंने कहा
1: अच्छा,
0: भाई आप तो जाइए, फिर मैं रुकता हूँ। तो ये एक कार्यक्रम इस तरीके से बंबई में मेरी पहली
1: ओपनिंग
0: रात
1: हुई आपकी?
0: ओपनिंग हुई, दादर एक नंबर प्लेटफार्म के बेंच पे सोया। कभी कभी उस जगह पे जाके मैं खड़ा होता हूँ अभी।
1: उस पल को महसूस करते हो जब
0: बिल्कुल
1: आपको
0: याद
1: ऐसा
0: आता है,
1: किसी ने कहा था?
0: याद आता है वो।
1: जी, तो जब आपने कहा कि आप दिल्ली से यहाँ आए, तो क्या आप मुंबई गीतकार बनने ही आए थे या कुछ और विचार लेकर भी आए
0: नहीं,
1: थे?
0: मैं सिर्फ गीतकार बनने ही आया था। और मैं उस वक्त जो है ना बहुत बड़ा फैन था शैलेंद्र जी और हसरत जयपुरी साहब का और शंकर जयकिशन का।
1: अच्छा।
0: लेकिन मैं यहाँ जब आया तो मैं इन लोगों से कैसे मिलूँ, क्या करूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। और कुछ दिनों बाद मेरे वो दोनों दोस्त भी चले गए। मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं यहीं कुछ ना कुछ करूंगा। इससे पहले रूटीन ये चल रहा था कि ये लोग घूमते थे, मेरे को ले लेते थे दिन में और रात को वहाँ खाना खिला के छोड़ देते थे। पूरा
1: अच्छा।
0: खर्चा वही लोग करते थे। लेकिन फिर जब ये जाने लगे तो मैं रुक गया और मैंने सोचा कि अभी मुझे कुछ करना है। ये 4-5 महीने के बाद मैंने एक जगह नौकरी की ग्रैंड रोड पे, और वहाँ उस नौकरी के मेरा ये था कि कुछ 4-5 बाल्टी पानी नीचे से सेकंड फ्लोर पे उनको पहुँचानी होती थी भर के, और उसके बदले में वो टेरेस पे मुझे सोने की जगह देते थे।
1: कोई पैसा नहीं देते
0: नहीं,
1: थे?
0: पैसा नहीं देते थे। फिर कुछ दिनों बाद वो कुछ और, भाई ये चाय ले आओ, फलाना डालो, ये लेटर डालो, और कुछ पैसे भी देने लगे। तो वहाँ काफ़ी मेरा कुछ 1-1.5 साल लगा इस तरह से, मुझे फिल्म लाइन का कोई रास्ता ही नहीं मिला।
1: अच्छा, मतलब 1 से 1.5 साल लगभग आप यही काम करते
0: यही
1: रहे,
0: काम
1: ये
0: करता रहा।
1: संघर्ष जो
0: अब इसको
1: था?
0: आप संघर्ष कहें या कुछ भी कहें, उस मंजिल तक ही नहीं मैं मुड़ा जहां के लिए आया था। अब
1: हाँ,
0: वो ही रोज उसमें चलता रहा। तो वहां पे मुझे 2-2.5 रुपए रोज के मिलते थे। तो वहां पे एक मुस्लिम होटल था जहां बड़ी रोटी मिलती थी, दाल फ्री होती थी, तो
1: अच्छा,
0: एक टाइम हम आराम से खा लेते थे, कोई टेंशन
1: इतना
0: नहीं था,
1: पैसा मिल जाता था
0: इतना
1: आपको?
0: पैसा मिल जाता था। तो वहां उस कंपनी में एक अकाउंटेंट थे, उन्होंने एक दिन कहा कि यार तुम क्या बनने आए हो। मैंने कहा यार बनने तो बहुत कुछ आया लेकिन कुछ होगा ही नहीं यहाँ पर, तो यहाँ तो काम ही कुछ और है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक जगह ले जाता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। और मैं उनके साथ गया और वो मुझे शंकर जी के म्यूजिक रूम में लेके गए।
1: अच्छा।
0: और तब तक जय भाई तो नहीं रहे थे, शंकर जी थे। और वहाँ जब मेरा उनसे परिचय हुआ, मैं बता नहीं सकता उस पल की खुशी कि शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ, वही शंकर जयकिशन का रूम, वही शंकर जी, वही उनके स्टूडियो। तो मेरे लिए तो ऐसा था मैं जन्नत में आ गया,
1: जी, सपने देखने जैसा।
0: सपने देखने जैसा। और यहाँ से इस पल से मेरे सपने साकार होने शुरू हुए फिल्म लाइन के।
1: तो आगे हम आपसे बात करेंगे, एक
0: जी
1: गीत सुन लेते हैं पहले।
0: मैं मेरे उस्ताद जी का एक गाना सुनना चाहता
1: जी
0: हूँ,
1: बताइए।
0: और वो गाना है बहारो फूल बरसाओ मेरा
1: मेरा
0: महबूब
1: महबूब
0: आया।
1: आया।

0: इस बीच माता पिता से बात होती रही, क्या उन्होंने पूछा? और वो जो दोस्त आपको छोड़कर फिर चले गए, आप कह रहे हैं मुंबई, क्या उनसे भी कभी सामना हुआ?
1: हाँ, वो हुआ, सब कुछ हुआ। वो भी मेरी खैर खबर लेते रहते थे।
0: हाँ।
1: और माता पिता तो लेंगे ही लेंगे, तो मैंने उनको एक, अपने माता पिता को एक थोड़ा सा झूठ बोला था कि मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, नौकरी मिल गई है, मैं यहीं रहूंगा और मुझे यहीं कुछ करना है। और उनको ये अंदेशा तो था कि फिल्म लाइन में कुछ करेगा। मेरे पिताजी ने एक ही बात करी कि भाई, अगर तुम कुछ ऐसा करना चाहते हो कि जो बम्बई में ही हो सकता है, तो ठीक है, आप करो, और जो भी आप कमा रहे हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप परेशान मत होना। जबकि कमाई वमाई कुछ थी नहीं, लेकिन एक एड्रेस था मेरे पास कि वहां से हम लोग बात कर सकते थे।
0: कुछ आपको उम्मीद भी बंधी कि मैं, मुझे कुछ करना है तो करना ही है।
1: जी जी जी।
0: तो जैसा कि आपने कहा कि वो आपको शंकर जयकिशन के स्टूडियो में ले गए, जहाँ शंकर जी मिले, उसके बाद फिर क्या आपको पहला गीत मिल गया या
1: नहीं,
0: आप
1: नहीं,
0: शंकर
1: नहीं।
0: जी के सानिध्य में रहे? कैसे
1: बस
0: क्या?
1: उनके सानिध्य में मैं उनके रूम में काम करता रहा, झाड़ू कटका पोछा जो भी मेरे को मिला मैं काम करता रहा।
0: अच्छा।
1: तो मुझे काम तो नहीं मिला, लेकिन क्या है कि वो शंकर जी के यहाँ एक बड़ा अच्छा सिस्टम था कि वहाँ पे सब खाने पीने की बड़ी मौज थी। आपको जो खाना है कैंटीन में खाओ, खाली सिग्नेचर कर दो, तो कोई परेशानी नहीं थी और सोने की कोई परेशानी
0: नहीं
1: थी। तो मैं जो है वहाँ पे काफ़ी समय तक रहा, और एक दिन शंकर जी ने मुझसे पूछा कि भाई, यहाँ हर आदमी एक सपना लेके आता है, तो तेरा क्या सपना है? तो मैंने कहा मैं गीतकार बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, सुनाओ कुछ। अब वो इतनी बड़ी शख्सियत, उनके सामने मेरे से कुछ सुनाया ना गया। मैं बोला क्या सुनाऊँ, एक होता है ना, अभी अचानक उन्होंने बोल दिया।
0: तो क्या तब तक आपने कुछ गीत लिख लिए थे, कुछ
1: लगभग
0: कविताएं
1: दो
0: रच ली
1: ढाई
0: थी?
1: सौ गीत मैंने लिखे थे।
0: अच्छा।
1: गीत तो रोज लिखता था, लेकिन अब शंकर जी जैसी पर्सनैलिटी सामने हो तो सिट्टी भिट्टी गुम सुनाए क्या।
0: बिल्कुल।
1: वो भी समझ गए और उन्होंने हसरत जयपुरी साहब से मुझे पहली बार मिलाया
0: अच्छा।
1: और कहा कि हसरत मियाँ, ये लड़का सोचता बहुत अच्छा है, इसको लिखना सिखाओ। ये उनके वर्ड थे।
0: तो ये किस वर्ष की बात होगी लगभग?
1: ये तो मतलब मेरा होते होते लगभग 78 की बात है, मतलब काफी समय हो गया। इन बिटवीन मैं यहाँ आता था बम्बई, सबके घर देखता था, सब चारों तरफ ये बंगला दिलीप कुमार का है, ये फलाने का, ये सब देखते थे। उन बंगलों को देख देख के ही खुशी होती थी, उनसे मिल तो नहीं पाते थे, लेकिन बस घर देख लेते थे तो उसमें
0: उसमें
1: खुश हो
0: भी
1: जाए।
0: ऊर्जा आ जाती थी,
1: हाँ, लगता
0: मोटिवेशन
1: था,
0: मिलता था
1: मोटिवेशन
0: कि
1: होता
0: कभी
1: था
0: हमारा भी ऐसा
1: कि
0: घर
1: कभी हमारा भी होगा।
0: होगा।
1: दिलीप साहब के घर के सामने ना, जैसे आज अमित जी के घर के सामने भीड़ लगती है, उन दिनों दिलीप साहब के घर के सामने भीड़ लगती थी, कुछ लोग आते थे हमेशा। वहाँ का एक अलग ही चलन था। वहाँ एक चाय वाला आता था, सबको चाय पिला के चला जाता था और पैसे नहीं लेता था।
0: अच्छा।
1: अब वो पैसे
0: कौन
1: क्यों नहीं,
0: देता
1: कौन
0: था?
1: देता था वो, या वो क्यों नहीं लेता था, ये मुझे नहीं पता।
0: मतलब दीवानगी होगी दिलीप कुमार
1: हो
0: साहब के
1: सकता
0: प्रति,
1: है,
0: ना इस
1: हो सकता
0: दीवानगी
1: है,
0: में भी लोग कितना काम कर जाते
1: करते
0: हैं।
1: हैं। तो दिलीप साहब आते थे बालकोनी में, हाथ हिलाते थे, बस इतना ही था। लेकिन मैं अक्सर जो है ना, हम लोग वो चाय पीने के लालच में ज्यादा जाते थे, क्योंकि
0: जी।
1: भूख प्यास भी होती है ना आदमी
0: जी
1: को।
0: जी जी
1: तो वो दौर पाली हिल का मुझे याद है अभी तक, कैसे वहां पे जाते थे।
0: जी
1: जब हसरत साहब ने मुझे कहा कि मैं कैलाश बिल्डिंग में रहता हूँ खार, आप वहाँ आइए, तो मैंने वहाँ उनके पास जाना शुरू किया। और पहले पहले तो क्या ऐसी बातें होती रहीं उनसे बातचीत में, वो मुझसे बात करते रहे, पूछते रहे सब कुछ। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हसरत साहब एक फरिश्ता बन के मेरी ज़िंदगी में आए।
0: जी
1: उन्होंने वाकई में मुझे लिखना सिखाया। मुझे मुझे लगा कि जो मैंने लिखा वो सब बकवास है, और अभी भी मैं उतना अच्छा नहीं लिख पाता हूँ जितना अच्छा हसरत साहब लिखते थे।
0: जी खैर, ये तो
1: कहीं ना कहीं मुझे एक रहता है, और शायद यही मलाल मुझे जिंदा रखे हुए है, शायद कभी कुछ ऐसा लिख पाऊं
0: जो हसरत साहब जैसा होगा।
1: उनके जैसा, हो सकता है,
0: जी।
1: लेकिन उनसे बढ़िया नहीं हो सकता।
0: ये एक बहुत अच्छी ख्वाहिश होती है किसी
1: जी
0: कलाकार की कि मैं उन जैसा बन जाऊं, क्योंकि आपने उनको अपना उस्ताद माना, हसरत
1: जी जी
0: साहब
1: जी
0: को।
1: जी बिल्कुल
0: बहुत अच्छा लग रहा है आपकी कड़वी सच्चाइयों को सुनकर,
1: जी
0: है
1: जी
0: ना सुधाकर जी? तो आगे हम आपसे बात करेंगे, एक
1: जी
0: गीत सुन लेते हैं पहले।
1: जी एक गीत मैं आपको ऐसा सुनाना चाहता हूँ कि जिस गीत की बहुत अहमियत है मेरी जिंदगी में, और वो गीत है परदेसी बाबू का।
0: जी
1: क्या है प्यार बताओ ना।

0: ये बताना चाहता हूँ ये गीत मुझे मिला कैसे।
1: अच्छा, ये बताना चाहते हैं
0: जी
1: भैया,
0: जी
1: बताइए,
0: क्योंकि
1: चलिए।
0: ये मेरे कैरियर का मैं समझता हूँ सबसे बड़ा गीत था। इससे पहले लगभग मेरे 240 45 गाने रिकॉर्ड हुए जो बड़े बड़े सिंगरों ने गाए और बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ किए, लेकिन कोई गाना मेरा बाहर नहीं आया
1: अरे, इतने सारे गाने करने के
0: इतने।
1: बाद भी?
0: हाँ, और नहीं आया तो मुझे ये मिला ऐसे कि मुझे आनंद राज आनंद जी मेरे मित्र थे और उनके साथ मेरा काफी आना जाना था, तो मैं हमेशा उनको बोलता था यार मेरे से भी कुछ लिखवा लो। ये गीत मिलने से पहले मैं स्टैब्लिश डायरेक्टर हो चुका था
1: फिल्मों की।
0: फिल्मों, लेकिन वो चली नहीं, मैं भी चला नहीं। तो लेकिन ये गीत जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मेरे पास उस वक्त 2-व्हीलर था और बारिश हो रही थी, और उस बारिश में ये था कि 50 रुपये मैंने अपनी मिसेज को कहा कि पड़ोस से कहीं से लाओ, वो लेके आई, पेट्रोल डाला और मैं सहारा स्टूडियो आया। और सहारा स्टूडियो में आया तो वहाँ पे मुझे ये गीत लिखने के लिए मिला। उनके डायरेक्टर, उन्होंने मुझे सिचुएशन बताई और मैंने ये गीत लिखा, और ये गीत लिखा और ये गीत मुझे लगा कि जैसे और गीत नहीं आए ये भी नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को कुछ वो नहीं था। तो मुझे बहुत अच्छे पैसे मिले इस गीत के, पहली बार इतने पैसे मिले
1: तो
0: मुझे।
1: हम ये माने कि जो पहला गीत सामने आया दुनिया के, वो ये था,
0: नहीं,
1: वो कोई
0: वो
1: और
0: कोई और था।
1: था। जी, बड़ा उलझा हुआ मामला है फिर
0: जी जी जी
1: तो
0: जी
1: बात चल रही थी कि आप हसरत साहब से मिले, आप
0: जी
1: शैलेंद्र जी से भी मिले, शंकर जयकिशन से मिले, तो हमारे मन में ये बात आ रही कि उनके साथ, क्योंकि आप 1973 में आ गए थे और आपने कहा कि लगभग 1978 के आसपास ये सब मुलाकातें शुरू हो गई थी,
0: जी जी
1: तो ये सफर कैसा रहा? किस तरह से आपने फिर गीत लिखना शुरू किया, या इन लोगों के साथ आपने वक्त को कैसे बिताया? इतना आसान
0: देखिए,
1: तो नहीं होता इतने बड़े
0: बहुत
1: लोगों के साथ।
0: बहुत मुश्किल होता है। इस सफर में मेरा अफसोस सिर्फ इतना ही रहा कि मैं शैलेंद्र जी से मिल नहीं पाया, वो उससे पहले उन डेथ हो गई थी उनकी।
1: अच्छा।
0: लेकिन मैं चूंकि उनका फैन था, हसरत साहब में ही मुझे शैलेंद्र जी भी मिल गए और हसरत जयपुरी भी मिल
1: मिल
0: गए,
1: गए।
0: वो मुझे मिल गए। और उस उन्हीं दौरान मेरी जो मुलाकात हुई वो पंडित नरेंद्र शर्मा जी से हुई,
1: अच्छा
0: और पंडित नरेंद्र शर्मा जी और शैलेंद्र जी एक ही गली के राइटर थे।
1: अच्छा
0: वो मतलब उनकी थॉट, उनका सोचना, तो उनसे मेरी काफ़ी मतलब मुलाकातें रहीं। और हसरत साहब के यहाँ जब मैं जाता था तो हम गीतों को जो डिस्कस करते थे, उनके सिखाने का सबसे अच्छा तरीका ये था कि वो कभी भी मेरे लिखे हुए गीत को रिजेक्ट नहीं करते थे।
1: अच्छा
0: वो कहते थे ये लाइन तुमने लिखी है ना, इसमें तुम क्या कहना चाहते हो, तो मैं बोलता था मैं ये कहना, तो उसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे कर लो, इस लाइन को यहां से निकाल दो, इसकी जगह ये ले आओ, मतलब मेरे ही गीत को वो सुधारते थे। वो कभी उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि ये क्या लिखा है, तो ऐसा मतलब उन्होंने कभी नहीं किया, वो हमेशा मुझे सिखाते थे, मैं करता था। और ये सफर एक ऐसा था कि मुझे एक दिन, मैं रात को पाली हिल पे घूम रहा था और हसरत साहब के यहाँ आने के बाद जो है ना, मेरे को ये था कि सोने का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब आना जाना मेरा लगा हुआ था, लेकिन ये मैंने एक झोपड़ा ले लिया था खेरवाड़ी में, और मेरी तब तक शादी भी हो गई थी तो हम लोग मियाँ बीबी रहते ही थे वहाँ पे। तो वहाँ मेरी मुलाकात बहुत ही मशहूर कॉमेडियन मारुति साहब से हुई।
1: अच्छा।
0: तो मारुति साहब जो ना, वो रात का समय था और अपने बरांडे में टहल रहे थे, तो मैंने उनको पहली बार टहलते हुए देखा, तो उन्होंने मुझे बुला लिया और मैंने उनसे बातचीत की, और उन्होंने भी वही क्वेश्चन पूछा, क्या करते हो, क्या करना चाहते हो, ये सब। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम कोई गीत सुनाओ, तो मैंने उनको सुना दिया, तो बोले कि तुम कल आओ, तो मैं नेक्स्ट डे पहुंचा। तो उन्होंने कहा बेटा ये गीत वीत तो ठीक है, तुम टेक्निकल कुछ काम करो। मैंने कहा जी वो क्या होता है, बोले कल आओ हम तुमको बताएंगे। और वो मतलब मेरे को अपने साथ उन्होंने रखना शुरू कर दिया, और उनके साथ रहने से क्या है, मेरे को थोड़ा सा इंडस्ट्री का देखने को मौका मिला, और उनके ही द्वारा मुझे किशोर कुमार साहब मिले,
1: अरे वाह।
0: मारुति साहब मुझे वहाँ लेके गए और वहाँ उन्होंने मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया
1: अच्छा।
0: जी, और मैं किशोर दा के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर लग गया।

0: बात है, तब तो किशोरदा तो गाने गा ही रहे थे, बहुत
1: वो तो
0: शानदार और लेजेंड से थे
1: उनका
0: वो
1: तो
0: तो।
1: क्या कहना।
0: बहुत सुंदर। आगे हम आपसे बात करेंगे, एक
1: जी
0: गीत सुन लेते हैं पहले।
1: तो मंदाग्नि जी, एक गाना जोड़ी नंबर 1 का टाइटल ट्रैक मुझे सुनाइए।
0: चलिए सुनते हैं आपकी
1: जी
0: पसंद का ये गीत।

0: मतलब इतना संघर्ष हुआ और संघर्ष के बाद कुछ राहत की सांस आपको तब मिली जब आप किशोरदा से जुड़े।
1: किशोरदा के जुड़ने के बाद मुझे लगा कि अब तो मेरा कुछ ना कुछ हो ही जाएगा।
0: हाँ, क्योंकि एक लंबा जुड़ाव रहा था किशोर कुमार के साथ आपका।
1: जी।
0: तो उनके साथ काम करने का अनुभव क्या रहा और किस तरह से फिर आपको सफलता मिलनी क्या शुरू हुई इस दौरान?
1: जी, मैं किशोरदा के साथ काम करने का मतलब ये हुआ कि मैं उस काम को काम नहीं कहता, एक ऐसी यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिला मुझे जहाँ सीखना ही सीखना था। वो आपके ऊपर है कि आप क्या सीखना चाहते हो, क्योंकि वो हर विधा में पारंगत थे। लिखना उन्होंने भी सिखाया, उन्होंने डायरेक्शन सिखाई, एडिटिंग सिखाई, उन्होंने कैसे किस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना चाहिए वो सब मैंने वहीं से सीखा।
0: वाला थे कि
1: बहुत और मैं उनको हमेशा साहब बोलता था, आज भी बोलता हूँ। उस घर के बहुत बड़े एहसान है मेरे ऊपर। वहां जाने के बाद ही मुझे लगा कि अब मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, और उसी घर से मुझे पहली डायरेक्शन की पिक्चर भी मिली। वो भी शायद इसी कारण मिली कि मैं उनका असिस्टेंट था, तो प्रोड्यूसर ने फेथ किया कि मैं कुछ कर सकता हूँ, और पहली फिल्म की डायरेक्शन मुझे वहीं से मिली।
0: जी, तो वो कौन सी फिल्म थी?
1: वो फिल्म थी गोरी।
0: गोरी,
1: और मेरे ये उसी दोस्त ने बनाई थी जो मुझे बंबई लेके आया था।
0: अच्छा।
1: विजय त्यागी
0: विजय त्यागी
1: उन्होंने बहुत पैसे

0: लिए थे, तो एक दिन बोले चल यार कोई और नहीं तो मैं फिल्म बनाता हूँ, और मुझे उन्होंने डायरेक्टर लिया। और इसमें किशोर दा ने भी गाना गाया, और इस पिक्चर को करने के लिए मैं शंकर जी के पास गया और मैंने उनसे कहा कि शंकर जी मैं एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें म्यूजिक दें। तो उन्होंने कुछ इतना पहचाना नहीं क्योंकि फासला काफी हो चुका था, तो
1: हाँ
0: मैंने उनको याद दिलाया कि मैं कौन हूँ। तो बोले अच्छा, जो कल तक हमारे यहाँ नौकरी करता था आज हमको नौकरी पे रखने आया है।
1: अरे
0: मैंने कहा जी नहीं, मैं कल भी नौकर था आज भी नौकर हूँ, मैं कल भी आपको मालिक समझता था आज भी है, बस ये फिल्म आप करेंगे तो मेरा थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि कितने पैसे लाए हो? अभी हमारी हिम्मत नहीं हुई कि उनसे ये पूछें कि लोगे कितना, कैसे करोगे, ये सब बातें तो हुई नहीं। उन्होंने पूछ लिया कितने लाए हो, तो हमने उनको कहा कि 21,000 हैं शगुन के, कहीं उनको ऐसा ना लगे कि टोटल इतने ही हैं। तो हम डरे हुए बहुत थे, तो उन्होंने कहा 1 रुपया और रखो इस पे। तो 1 रुपया रखा, उन दिनों कागज का चलता था, उन्होंने 21 छोड़ के 1 रुपया उठा के हमारी पिक्चर का, इसी में पूरी पिक्चर करूंगा,
1: अरे क्या बात
0: और
1: है
0: उसी में उन्होंने की।
1: ये होते हैं महान
0: जी जी
1: संगीतकार, और उन्होंने समझा आपकी परिस्थिति को,
0: जी
1: और बहुत बड़ी बात। तो उसके बाद उस फिल्म में भी आपको कोई गाना था या केवल डायरेक्शन ही
0: नहीं,
1: था?
0: मेरे गाने थे उसमें, मेरा पहला गाना उस फिल्म में मन्ना डे ने गाया था।
1: अच्छा।
0: हाँ, मन्ना डे साहब ने वो गाना गाया था, और गाना था दुल्हन सेज है फूलों की, दहेज गमों के खार, दूल्हे का दहेज है जीवन में दुल्हन का सच्चा प्यार।
1: क्या बात है। यहाँ जब बात चल रही है गीत की, तो कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
0: देखिए आप मेरा एक गीत सुना दीजिए, फिर उस गीत की कहानी मैं आपको बताऊंगा।
1: अच्छा, कौन सा गीत?
0: मेरा वो गीत जिसने मुझे सुधाकर शर्मा बनाया, और पहला गाना जो रिलीज हुआ वो था ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम
1: क्या बात है
0: की।
1: ये गीत तो हर एक के दिलो
0: जी
1: दिमाग में है,
0: जी
1: और
0: जी
1: अगर कहीं शादी ब्याह के या किसी फंक्शन में हम जाते हैं तो इस गीत पर तो बहुत सारे डांस क्रिएट किए
0: इस
1: जाते
0: गीत
1: हैं।
0: ने मेरी जिंदगी बना दी, मतलब
1: अच्छा।
0: ये गीत पहला गीत था जो मेरा रिलीज हुआ,
1: हाँ।
0: और उसके बाद जो है ना लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया। एक्चुअल में हुआ ये कि हिमेश रेशमिया साहब जो आज के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इनके पिताजी मेरे दोस्त थे विपिन भाई रेशमिया,
1: अच्छा।
0: और एक फिल्म में वो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर भी थे, मैं डायरेक्टर था। तो उन्होंने मेरे को कहा कि यार अभी हिमेश जी सीरियल बना रहे हैं तो आप इनके साथ लग जाइए। मेरे पास उन दिनों कुछ काम वाम था नहीं, क्योंकि उससे पहले मैं डायरेक्टर ये वो सब बन के सब फ्लॉप हो चुका था, एकदम बेकार, मतलब उस लायक था कि अब मैं काम मांगने भी कहाँ जाऊँ, क्योंकि लोग, मैं डायरेक्टर बन गया, 2-3 पिक्चरें मैंने कर ली लेकिन चला नहीं। तो अब शर्मिंदगी भी थी कि मैं काम कहाँ जाऊँ, तो मैं हिमेश जी के साथ जो ना उनके जितने सीरियल थे उनके सबके टाइटल मैंने ही लिखे।
1: अच्छा।
0: हाँ, ओके, लगभग उन्होंने 40-45 कुछ ऐसे सीरियल उनके थे, लेकिन सबके मैं गाने मैंने लिखे, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे ढंग से अपने साथ ज्वाइंट किया। हमारा उम्र में बहुत फर्क था,
1: जी
0: तो एक दिन हिमेश जी बोले कि सर वो क्या है, मैंने कहा भाई तुम मुझे सर बोलो मैं तुमको सर बोलूं, बस इसी में कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये सलमान भाई ने ये गाना हिमेश जी को दिया लिखने के लिए, प्यार किया तो डरना क्या
1: डरना
0: का
1: क्या?
0: टाइटल सॉन्ग था,
1: जी,
0: और हिमेश जी ने ये गाना मुझे
1: आपको
0: दिया।
1: दिया? हाँ।
0: और उन्होंने कहा कि सर ये पिक्चर अगर हमको मिली मिली है, अगर ये गाना आप लिखोगे तो गाना सुपर डुपर हिट होगा और ऐसा होगा वैसा होगा।
1: तो
0: पहली
1: हिमेश जी की ये पहली फिल्म थी?
0: फिल्म थी उनकी, ये पहली फिल्म थी। तो मैंने कहा भाई लिख देंगे, लेकिन एक सवाल है हिमेश इसमें कि प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि जितनी उन्होंने अच्छी लिखी होंगी वो तो सब आ गई, तो हम लोग फंस जाएंगे यार। बोले नहीं नहीं सर, लेकिन वो तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि टाइटल ही वो है। तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। तो उस गाने को हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली
1: ठीक है।
0: और कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे,
1: हाँ।
0: इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, सेकंड लाइन आप लिखो ही मत, बस इसको हुक लाइन रखेंगे।
1: अच्छा।
0: तो फिर मैंने लिखा तेरे प्यार में डूब गए हम खुद को ही, वो जैसा
1: हाँ,
0: वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम
1: तेरे
0: की,
1: नाम की।
0: और वो ऐसे नाम की चुनरिया ओढ़ी के उसके बाद फिर ये गाना

0: किशन जी ने सुना तो उन्होंने कहा कि एक गाना इस टीम का और ले लो। फिर हमको वो एक गाना मिला और वो गाना था तुम पे हमें अटके आ रहा दिल भी मारे झटके
1: क्योंकि तुम वो हटके
0: हटके। तो ये दो गाने मेरे पहले रिलीज हुए और बहुत मजा आया। मैं और हिमेश बहुत नर्वस थे कि पता नहीं गानों का क्या होगा। तो लिबर्टी में हम लोग पिक्चर देखने गए थे, तो हम लोग पिक्चर में इतना इंटरेस्ट नहीं था, हमको इंटरेस्ट था कि अपना गाना कब शुरू होता है। और जैसे ही अपना गाना शुरू हुआ और लोगों ने, मैंने पैसे बरसते हुए पहली बार देखे,
1: अच्छा
0: अपने गाने पे,
1: क्या बात है।
0: दोनों बहुत खुश हुए और हमें लगा कि अब हमारी लाइफ बन गई। और वाकई में उस गाने ने हमारी लाइफ बन गई।

0: वैसे तो इस फिल्म के संगीतकार साजिद वाजिद साहब थे,
1: इसमें जतिन ललित जी भी थे, साजिद वाजिद भी थे और हिमेश रेशमिया भी थे, दो गाने हिमेश जी
0: और गीतकार भी, अन्य गीतकार भी थे
1: इसमें, समीर साहब भी थे, एक और गीतकार थे और
0: एक आपका
1: मैं भी था। और मुझे लगा कि इतने सब बड़े बड़ों में देखो क्या होगा, लेकिन
0: पर ये गाना तो मतलब आज भी सबके जुबान पर है और सुनते ही एक अलग किस्म की थ्रिलिंग हो जाती है। इतना खूबसूरत तरीके से आपने लिखा है और हिमेश जी ने उसको संगीत में
1: बहुत सुंदर
0: है।
1: इसमें
0: और पिक्चराइजेशन भी बहुत सुंदर है।
1: सबसे बड़ा क्रेडिट इसमें मैं हिमेश जी को ही दूंगा, क्योंकि उन्होंने वो जो प्यार किया तो डरना क्या की ट्यून बना के जो मुझे बचाया सेकंड लाइन लिखने से, ये बस ऊपर वाले ने उनके दिमाग में डाली,
0: बारीक काम
1: बहुत बारीक काम किया।

0: और रमेश जी जितना भी काम करते हैं वो बहुत बारीकी में करते हैं
1: बिल्कुल
0: और बहुत धैर्य से करते हैं।
1: मुझे एक बात बताइए सुधाकर जी, आपका एक इंटरव्यू सुन रही थी, आपने कहा कि इस गीत में मैंने एक पैंतरा डाला था, मैंने हिमेश जी से कहा था कि इसमें एक पैंतरेबाजी करनी पड़ेगी,
0: जी
1: तो
0: जी
1: ये पैंतरा क्या था और किस तरह से आपने इसको निभाया, हमारे श्रोता
0: देखिए
1: जानना चाहेंगे।
0: पैंतरा क्या है कि एक्चुअल में हसरत साहब बोलते थे कि जब कभी ऐसी जगह पे फंस जाओ तो उसमें पैंतरेबाजी से काम लेना चाहिए।
1: हाँ।
0: वो पैंतरा क्या होता है कि मतलब अब जैसे कि प्यार किया तो डरना क्या कि सेकंड लाइन मैंने नहीं लिखी, तो पैंतरा ये था कि गाने को ऐसी जगह से शुरू करो कि लोगों को ये पता ही नहीं लगे कि कहना क्या चाहते हैं। अब हम कह रहे हैं तेरे प्यार में डूब गए हैं हम, खुद को ही भूल गए हैं, दुनिया चाहे जो, यहां से शुरू हो रहे तो उनको क्या मालूम ये क्या कहने वाले हैं। और ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम की, जब प्यार किया तो डरना क्या, हिमेश भाई ने इसकी ट्यून बनाई, और जब प्यार किया तो डरना क्या, ओढ़ ली, डरना क्या के बाद लोग खटके तो हमने दूसरा ही रंग दे दिया, ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम की, ये
1: बहुत
0: ओढ़ली पैंतरा
1: खूब बहुत सुंदर, मतलब एक बहुत बारीक काम था ये,
0: जी
1: जिसे
0: जी
1: हर एक को समझना आसान नहीं था।
0: जी जी
1: तो जब ये गीत आपने रिकॉर्ड किया, आपने अलका याग्निक और कुमार सानू को इस गीत
0: जी
1: से
0: जी
1: में गवाया,
0: जी
1: तो क्या कोई दिक्कतें आपको पेश आई और किस तरह से गाना, क्योंकि गाना मिल तो गया लेकिन रिकॉर्ड किस स्थिति में हुआ उसकी भी
0: ये
1: कहानी होती है।
0: हाँ ये दिक्कत तो इसमें बहुत बड़ी आई, और दिक्कत सबसे बड़ी ये आई कि हिमेश जी ये चाहते थे कि ये गाना अलका याग्निक और कुमार शानू गाएं, तो चूंकि उनका ये पहला गाना था और उनका ये था कि अगर ये दोनों गाएंगे तो सुपरहिट होगा, तो दादा को लाने में को मैंने कहा ठीक है मैं लेके आता हूँ, क्योंकि मेरा रिश्ता था, हम लोग काम कर रहे थे, तो मैं गया तो दादा को तो इतना प्रॉब्लम नहीं था, मैंने दादा को बोला दादा एक फिल्म मिली है और उसमें आपको ये गाना गाना है, तो दादा बड़ा वाकई में वो टाइगर ही हैं
1: कुमार
0: वो,
1: सानू के
0: हाँ वो जो हैं बस वही हैं,
1: जी।
0: वो कभी कुछ बनावटी बातें नहीं करते हैं, उसमें कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये कुछ नाराज हैं, वो नाराज वाराज भी कुछ नहीं होते, उनको खुद ही नहीं मालूम कि वो क्या उनको बोलना चाहिए और क्या बोल गए, बड़े भोले और बड़े डैशिंग आदमी है, तो मेरे को बोले हाँ ठीक है गा दूंगा गा दूंगा, कौन है म्यूजिक डायरेक्टर, तो मैंने कहा आपने एक दो गाने सीरियल में गाए हैं उसके, हिमेश भाई का म्यूजिक है, हाँ अच्छा अच्छा वो करता है वो, करूंगा करूंगा। प्रॉब्लम आई अलका याग्निक की, उनका अप्रोच नहीं हो पा रहा था, मैं जब भी उनकी बिल्डिंग पे जाता था तो वो ऊपर फोन करके पूछते थे तो वहां से मना हो जाता था, कई कारण रहे होंगे जो भी, तो मैं बड़ा परेशान हुआ, तो मैंने कहा हिमेश भाई बाकी तो सब हो रहा है मगर उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है, तो वो मुलाकात यूं हुई कि मैंने सेम बिल्डिंग में कविता कृष्णमूर्ति रहती थी, तो मैं नेक्स्ट डे गया, मैंने कहा मुझे कविता जी के घर जाना है, तो उन्होंने कविता जी के घर फोन लगाया और उन्होंने कहा भेज दो, अब मैं कविता जी के घर नहीं जाके अलका जी के घर चला गया
1: अरे यहाँ पर आपने भी पैतरा
0: पैंतरा हो
1: खेला
0: गया
1: जी
0: और फिर अलका जी से मेरी बात हुई, अलका जी को मैंने कहा कि ऐसे ऐसे गाना आपको गाना है, मुझे जानती थी, तो उन्होंने एक म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, मैंने उन हिमेश जी का परिचय दिया, ये सब हुआ, तो बोले कि ठीक है लेकिन अभी तो क्या है मैं थोड़ी बिजी हूँ ये है वो, मैंने कहा गाना आपको गाना है और ये गाना कल ही गाना पड़ेगा आपको, वरना ये पिक्चर हमको नहीं मिलेगी और बहुत दिनों से मेरे पास काम वाम नहीं है तो अभी मिला है, तो बोले नहीं कल तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, मैं चुप हो गया, बोले कल नदीम श्रवण की रिकॉर्डिंग है, मैंने कहा ठीक है, तो मैं क्या गया वहां से निकला, और मैं निकलने से पहले वो गाना उनको कैसेट में लेके गया था, उनको सुनाया गाना बहुत पसंद आया, तो मुझे लगा गाने के लिए तो रेडी हो गई है, अब ये कल नहीं गा पाएंगी क्योंकि
1: उनकी
0: उनका गाना
1: रिकॉर्डिंग
0: है,
1: है।
0: तो मैं सनी में पहुंचा और सनी में मैं गया तो उधर वो सिटिंग रूम में नदीम और श्रवण जी दोनों बैठे थे, तो मैं बार बार ऐसे उनको झांक के ऐसे हो जाता था, अभी मैं अंदर भी कैसे जाऊं, थोड़ी देर में श्रवण भाई बाहर आए, तो मैंने श्रवण भाई को बोला कि श्रवण भाई एक मेरी छोटी सी मदद कर दो यार मैं बहुत परेशान हूं, तो उन्होंने तुरंत जेब में हाथ डाल के पर्स निकाला,
1: अरे
0: बहुत बढ़िया इंसान थे वो, मैंने कहा भाई ये वाली मदद नहीं, हाँ क्या हुआ क्या हुआ, मैंने कहा ये वाली मदद नहीं, मदद ये चाहिए कि हमको एक पिक्चर मिली है और उस पिक्चर में एक गाना है, वो गाना हम अलका जी से गवाना चाहते हैं, तो अगर वो कल गाएंगी तो पिक्चर हमको मिलेगी, अदरवाइज वो नहीं मिलेगी। हाँ तो फिर क्या हुआ? हमने कहा नहीं, मैं अलका जी से बात हुई, वो आपका गाना गा रही हैं इसलिए हमारा गाना नहीं गा
1: नहीं
0: सकती।
1: गा पाएंगी।
0: तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मेरे सामने ही अलका जी को कहा फोन करके कि ये सुधाकर जो है ये मेरा खास है, और कोई बात नहीं, आप मेरा गाना 2 बजे के बाद, 3 बजे के बाद कभी भी गा दो, पहले इनका गा दो।
1: क्या बात है।
0: ये दिक्कत थी। लेकिन जब ये गाना एम्पायर में रिकॉर्ड हुआ और वो पल आया कि इन दोनों शहनशाहों ने गाया, और एक इसमें एक बात आ गई, मैं ये भूल गया कि मुझे ठीक से किसी ने बताया नहीं था कि इसमें काजोल हीरोइन है। तो मैंने हिमेश भाई को पूछा, यार हिमेश भाई इसमें हीरोइन कौन है? तो उसने कहा सर काजोल। मैंने कहा यार गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? हमने कहा यार काजोल के लिए तो इसमें कोई लाइन ही नहीं है। क्या मतलब? तो मैंने कहा वो अब मैं क्या बताऊं आपको सर, ये एक बार कुमार शानू को बुलाना पड़ेगा। बोले लेकिन हुआ क्या है? हमने कहा वो एक लाइन में काजोल के लिए लिखना चाहता हूँ, खासकर काजोल की आंखें जो है ना वो बड़ी कमाल हैं, और वो जो बातें करती है, जो जितनी
1: आंखें
0: बातें
1: बोलती
0: करती
1: हैं।
0: है सिर्फ उसकी आंखें बोलती हैं, बाकी सब तो ठीक है। और वो बात मैं कह नहीं पाया, लेकिन मैं कह दूंगा। तो बोला ठीक है बुलाओ, फिर आप ही बुलाओ। तो मैंने शानुदा को फोन किया। शानुदा शायद बर्थडे मना रहे थे, अपना था या किसी और का मुझे याद नहीं। मैंने कहा शानुदा, इधर भी एक पैंतरा चला। मैंने कहा शानुदा एक्चुअल में जो लाइन गाने में प्रोड्यूसर ने पसंद की थी वो मैं आपको लिखवाना भूल गया, और जो रिजेक्ट थी वो आपने गा दी, और ये तो गड़बड़ हो जाएगी, तो आप प्लीज आके वो लाइन सही कर दीजिए। अरे यार मैं बर्थडे में हूँ, सब चमकी उमकी पड़ी है कोर्ट पे, मेरा ये हाल है। मैंने कहा दादा गाना तभी लगेगा जब वो लाइन होगी। दादा आए,
1: अच्छा, दो
0: अरे
1: लाइन के लिए दिया है।
0: एक ही लाइन थी,
1: अच्छा
0: दो तो मैंने बोली, लाइन तो एक ही थी।
1: जी।
0: और वो आए, और आते ही थोड़े से जरा प्यार में नाराजगी होती ना, हाँ यार तो बोल बोल कौन सी लाइन है, क्या है ये? हमने कहा सर ये मेरी लाइन है वो, तौबा तौबा ये आंखें करती हैं सौ सौ बातें।
1: अच्छा जी।
0: तो वो मेरे को तो हंसने लगा, बोला तेरा नाटक है, तूने अभी सोचा होगा ये। मैं कुछ बोला ही नहीं, और उन्होंने वो लाइन गाई, और वो गाने में सबसे अच्छी लाइन
1: बहुत सुंदर थी। और काजोल की आंखें जब
0: है।
1: एकदम
0: जी
1: हाईलाइट होती हैं उस
0: जी
1: गाने में, और सलमान गाते हैं उनके
0: गाते
1: लिए,
0: हैं,
1: बहुत
0: बहुत
1: प्यारा
0: अच्छा
1: लगता
0: गाते
1: है, बहुत सुंदर।

0: कहने का ये हुआ सुधाकर जी कि एक गीत को बनवाने में इतनी मशक्कत आपको करनी पड़ी, कहाँ कहाँ आपको जाना पड़ा, तो जो आज नए गीतकार आने वाले हैं उनको भी ये सबक मिलता है कि इतना आसान नहीं है कुछ
1: नहीं
0: करना, है ना, कि हमने लिख लिया और हम गीतकार कहला गए, उसके पीछे कितनी संघर्ष की कहानी है।
1: संघर्ष की कहानी, मतलब यह होता है कि अगर चूंकि मैं डायरेक्टर रह चुका था, मैं ये सब कर चुका था, मैं लाइन में मतलब नया नहीं था ना, तो मुझे वो मालूम था कि जो ये म्यूजिक डायरेक्टर जो चाह रहे हैं, अगर ये फुलफिल होगा तो गाना और खिल के आएगा, और वो चूंकि नए थे तो मैं वो सब कर सकता था। तो कभी भी कोई भी गाना सिर्फ कागज पर हिट नहीं होता है,
0: बिल्कुल
1: उसके बहुत सी उसमें जो चीजें हमको डालनी होती हैं वो हम डालते हैं।
0: बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप गीत लिखते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसके लिए गीत लिख रहे हैं, सिचुएशन क्या है।
1: हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस फिल्म का हीरो कौन है,
0: हाँ
1: हीरोइन कौन है, ये गाना क्यों गाया जा रहा है, ये गाना गाते वक्त जो है ना इनकी सिचुएशन क्या है, और इस फिल्म का जो डायरेक्टर है उसका मिजाज क्या है, वो किस तरह के गाने पसंद करता है, तब हम उस रंग में जा सकते हैं।
0: मतलब आपके लिए किसी किरदार और सिचुएशन को जानना बहुत जरूरी
1: बहुत
0: है, तब
1: जरूरी
0: जाके
1: है।
0: शब्दों का चयन आप करेंगे। आपने एक उदाहरण दिया था कि गणेशा पर जो आपने
1: जी जी जी
0: बनाई है, तो
1: जी
0: वो बच्चा कॉन्वेंट स्कूल का
1: कॉन्वेंट
0: है।
1: स्कूल का है, इसलिए मैंने उसमें कर दिया कि ओ माई फ्रेंड गणेशा। अगर वो लड़का कॉन्वेंट में नहीं होता तो वो गणेशा को फ्रेंड नहीं कह सकता, और वो फ्रेंड जो ना इतना हिट हुआ कि उसकी तीनों चारों सीरीज मैंने ही लिखी।
0: बिल्कुल।
1: तो ये क्या होता है कि हम किरदार क्या है हमारा, वो क्या कह रहा है, कितनी बात कर रहा है, तो उससे हमें क्लू मिलता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं।
0: जी
1: अभी जैसे प्यार किया तो डरना क्या में ही, जब दूसरा गाना हमको मिला तो अब वो गाना लिखना था हमको कि उसमें गाना डालना है और उसमें भैया भी होना चाहिए। तो मैं और हिमेश भाई ये थे कि यार गाना तो ठीक है, भैया क्या करेगा इसमें। तो मेरे को उन्होंने कहानी बताई कि भाई ऐसा है, अरबाज भाई वो रोल कर रहे हैं तो वो उनकी भाई कुछ कहानी है, वो बहन को ऐसा चाहते हैं, ये प्यार करता, तो हमने कहा ठीक है। तो वो गाना हुआ तुम पे हमें अटके आ रहा दिल भी मारे झटके, तो अब झट ये तो गाना हो गया, अब भैया की एंट्री कैसे होगी।
0: हाँ
1: तो मेरे को एक जहन में बात आई कि देखिए जब कोई लड़का लड़की आपस में मिलते हैं, भले वो सच्चे मन से प्यार कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, भाई को अगर पहली बार पता लगेगा तो, और उसे उसे लगेगा कि ये मेरी बहन की तरफ बढ़ रहा है, तो वो खटकेगा जरूर,
0: जी
1: भले बाद में उसको पता
0: जी
1: लगे कि ये मेरी
0: सच्चाई
1: बहन की
0: यही है।
1: सच्चाई है,
0: हाँ हाँ
1: लेकिन पहला उसका जो
0: रिएक्शन आएगा।
1: रिएक्शन आएगा तो मेरी वो लाइन आ गई, बच के रहना प्यार में तुमको पड़ जाए ना फटके, और भैया को तू खटके।
0: हाँ अच्छा
1: और ये
0: जी
1: गाना कंप्लीट
0: जी
1: हुआ,
0: जी जी
1: ये दो गाने मेरे सुपर डुपर हिट
0: जी
1: हुए।
0: जी

0: जी
1: दृष्टि होनी चाहिए गीतकार की, एक संगीतकार की, तब जाकर किसी की एंट्री आना कोई इतना आसान नहीं है कि
0: जी
1: किसी भी गीत में कोई भैया आया या दादी आई या ताऊ आए,
0: हाँ,
1: वो क्यों
0: वो
1: आए
0: क्यों आए
1: और गीतकार ने उनके लिए क्या लिखा?
0: देखिए, ये फिल्म हमराज का गाना है, साडे नाल आएगी ते लाइव बन जाएगी। इसकी भी कहानी बड़ी कठिन कहानी है।
1: अच्छा
0: क्या है कि मैं इतना बड़ा राइटर नहीं हूं जितने बड़े हमारे बुजुर्ग होते थे, और उनके सामने शायद कोई बोलता भी नहीं था, उनका लिखने का भी इतना परफेक्शन भी था जो शायद मुझ में नहीं है। मैं लेकिन एक बात की जरूर कोशिश करता हूं कि मेरा डायरेक्टर, मेरा म्यूजिक डायरेक्टर जो मुझसे चाहता है मैं उसको फुलफिल कर देता हूं,
1: जी, ये सबसे बड़ी
0: अपनी
1: बात
0: बात
1: है।
0: को रखते हुए।
1: जी
0: मैं ऐसा
1: जी
0: नहीं कहता कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उतनी बड़ी पदवी मेरे पास नहीं मिली, और नहीं मिली तो अच्छा है, क्योंकि मुझे भी अलग अलग काम करने का मजा है। कोई आदमी बोलता है मुझे ऐसा चाहिए तो मैं कोशिश करता हूं वैसा ही दूं। तो ये जब गाना ओके हो गया, सब कुछ हो गया, अब उसके बाद बात आई कि मेरे को डायरेक्टर ने सजेशन दिया कि इसमें जब सब नाच रहे हैं तो दादी भी नाचेगी और
1: अच्छा
0: दादी गाएगी भी।
1: अच्छा
0: तो मेरे को थोड़ा सा फिर झटका लगा,
1: हाँ
0: क्योंकि झटका इसलिए मुझे लगता था कि ये सारी बातें मुझे कन्वे होती थी। अभी हिमेश भाई ने ट्यून बना दी, सब कुछ हो गया, अभी अगर उनको भी बोला तो वो भी मुझे ही बोलेंगे। और मुझे ये हमेशा रहता था कि हिमेश भाई की बात, अगर जो उन्होंने सोचा है अगर मैं वो नहीं दे पाया तो हिमेश भाई निकाल देंगे या प्रोड्यूसर निकाल देगा।
1: सही
0: मुझे
1: बात।
0: एक डर हमेशा रहता था, आज भी रहता है, कि अगर मैं अच्छा काम नहीं कर पाया। अच्छे से दो मुरादें हैं, एक अच्छा काम वो जो आपको पसंद है, एक अच्छा काम वो जो दुनिया को पसंद है। तो मैं दोनों के कॉम्बिनेशन में रहता हूं कि मुझे
1: बिल्कुल
0: भी लगे और दुनिया को भी लगे।
1: जी।
0: तो मैंने कहा ठीक है, दादी गाएगी लेकिन एक सिंगर और बुला लीजिए फिर। तो जसपिंदर नरूला जी को मैंने फोन किया
1: क्या बात है।
0: और उनको बुलाया। गाना वाना लिखा हुआ नहीं था तब तक,
1: अच्छा
0: पहले सिंगर तो मिले। तो जब हो गया तो मैंने गाना लिखा उसमें। अब मैंने सोचा कि दादी जो गा रही है तो दादी क्या गाएगी, अभी ये तो लव सॉन्ग चल रहे हैं, हीरोइन हीरो की तारीफ कर रही है, हीरो हीरोइन की कर रहा है, ये कर रहा है, सब दोस्त नाच रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, दादी अचानक बेचारी क्या गाएगी। तो बहुत सोचने के बाद ना मुझे एक याद आया कि जब गांव में कोई फंक्शन होता है ये सब ऐसा होता है ना, तो बुड्ढी बुड्ढी भी नाचना शुरू कर देती
1: हाँ
0: हैं,
1: हाँ
0: और वो कभी कभी तो ऐसा नाचती हैं कि जवान उसको देखना शुरू कर देते हैं, नाचना बंद कर देती हैं,
1: जी।
0: उनका अपना एक स्टाइल होता है। तो मैंने पूछा उनको कि भाई इसके दादाजी भी हैं क्या फिल्म में, और बाद में ऐसा नहीं दादा भी कुछ जवाब देगा, बोले नहीं दादा नहीं दादी।
1: जी
0: तो अब वो जो बॉबी देओल साहब गाना गा रहे हैं गा रहे हैं गा रहे हैं, और दादी की एंट्री मैंने कराई कि वारी वारी जाऊं पुत्र तेरी इस जवानी पे, और तेरे दादा याद आए तेरी इस कहानी पे।
1: जी
0: यहां तक तो दादी गाती है, अब
1: हाँ
0: लड़का क्या जवाब दे,
1: हाँ
0: दादी कोई रोमांटिक जवाब तो नहीं दे सकता है। तो कहता है कि दादी इस बात में दम है, पोता ना तेरा कम है, वादा है तू अगले साल पड़ पोता खिलाएगी।
1: क्या बात है
0: और ये 10 मिनट की कहानी है, मतलब
1: जी।
0: आपको अभी लिखना है, गाना चल रहा है, गाना गाया जाएगा, तो वो आपका माइंड जो है ना वो कभी भी हाइपर टेंशन में नहीं आना चाहिए। कोशिश करो कि अगर कुछ लोग बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, और हम वैसा काम करने की कोशिश करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो ये गाना मतलब इतना बड़ा सेलिब्रेशन और दादी की एंट्री होना, ऐसे बहुत से काम जो है ना मेरी लाइफ में हुए हैं और मैं उनमें से पार भी हुआ हूं।
1: जी।
0: गीत सुनाइए।
1: मैं आपसे यही कहने वाली थी, चलिए सुनते हैं आपकी
0: जी
1: पसंद का ये गीत फिल्म हमराज से।
0: हमराज।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमरीका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हर्मिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंध

0: बंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे दो कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने ये पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में MSME दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि MSME क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
2: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
0: इस अवसर पर MSME मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
3: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, MSME के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी MSME को आगे ले जाना चाहते हैं।
0: उपराष्ट्रपति ने देश में MSME को

0: सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु केम्पगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि केम्पगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केम्पगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृहमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: केरल में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और साई जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच 2 सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमरीका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमरीका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
2: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है, हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमरीका पर युद्ध विराम का पालन ना करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम ना बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।

0: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समयानुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने कहा कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने ये भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मिशा जिल्मरमैन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमों ने 2-2 सेट अपने नाम कर लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा। और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Seychelles to attend its 50th independence anniversary celebrations as guest of honour. India gifts fast patrol vessel, ambulances, utility vehicles and laser radial boats to Seychelles for its development and security. Prime Minister Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani tomorrow. Sri Ram Janmabhoomi Mandir Trust General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra resign on moral grounds following the donation embezzlement case. Ceasefire between the US and Iran under pressure after a series of retaliatory strikes between the two sides. And in US Open Badminton, India's Devika Sehwag, Kidambi Srikanth and Ronak Chauhan reach semifinals in California. Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria this afternoon on a 3-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport.

0: भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन। समृद्ध संगीत परंपरा वाले परिवार में जन्मे प्रभात ने संतूर की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। आपने सबसे पहले श्री दुलाल रॉय से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। इससे पहले आपने लंबे समय तक उस्ताद साबिर खान से तबला सीखा, जिससे आप में लय और ताल की गहरी समझ विकसित हुई। आपने संतूर की विधिवत शिक्षा पंडित तरुण भट्टाचार्य और पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी से प्राप्त की। वर्तमान में आप सारंगी वादक पद्म भूषण उस्ताद साबरी खान और सरोद वादक पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खान से वाद्य संगीत की बारीकियों का प्रशिक्षण ले रहे हैं। संगीत में MA करने वाले प्रभात ने गायन और वाद्य संगीत की विभिन्न शैलियों का ऐसा समन्वय विकसित किया है जिससे उनका संगीत मधुर और पारंपरिक दोनों बन गया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के एक ग्रेट कलाकार प्रभात ने भारत के साथ साथ यूरोप में भी व्यापक रूप से प्रस्तुतियां दी हैं। आपने स्पेन, फ्रांस, चिली, केनिया और नॉर्वे जैसे देशों में कार्यक्रम किए। आपने फ्रांस में आयोजित इंडिया फेस्टिवल और स्पेन में आयोजित स्प्रिंग फेस्टिवल में भी भाग लिया। हाल ही में आपने ट्यूनिशिया में ICCR द्वारा आयोजित भारत स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रस्तुति दी। एक रचनात्मक कलाकार के रूप में प्रभात हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में नए आयामों की खोज में निरंतर कार्यरत हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ संतूर रिसाइटल बाय प्रभात मुखोपाध्याय। Born in family of rich musical tradition, Prabhat has already made himself a name in the world of Santur. He was initiated by Sri Dulal Roy. He took Talim from Ustad Sabir Khan in Tabla for a long time to acquire a sense of rhythm and tad. He took extensive training in Santur from Pandit Torun Bhattacharya and Padma Shri Pandit Bhajan Sopori, the two maestros in the instrument. Presently, he is taking tutelage in the intricacies of instrumental music from the great Sarangi Maestro, Padma Bhushan Ustad Sabri Khan, Sarod Maestro, Padma Vibhushan Ustad Amjad Ali Khan. An MA in music, Prabhat has attained the distinction of bringing in a synthesis of the various phrases of vocal and instrumental music to make it both lyrical and ethnic. A-grade artist of All India Radio and Doordarshan, Prabhat has travelled extensively within the country as well as in Europe. He has performed in so many countries, Spain, France, Chile, Kenya, Norway. He participated India Festival in France and Spring Festival in Spain. Recently, he performed India Independence Day Festival in Tunisia, organized by ICCR. A creative artist, Prabhat has been in search of new dimensions in Hindustani classical music.
0: आपके साथ आज इस कार्यक्रम में तबले पर संगत कर रहे हैं मुस्तफा हुसैन। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का आरंभ राग रागेश्वरी से कर रहे हैं। प्रस्तुत है आलाप, जोड़ और झाला, विलंबित रचना झपताल और दुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: Today he is accompanied on tabla by Mustafa Hussain. Prabhat Mukhopadhyay begins his Santur recital with Rag Rageshri. He now presents Alap, Vilambit Lay composition set to Jhaptal, and Drut Lay composition is set to Teen Tal.

0: पर बजाया गया राग रागेश्री। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का समापन पहाड़ी धुन से कर रहे हैं।
1: That was Rag Rageshri, performed by Prabhat Mukhopadhyay. He concludes his recital with a Pahari Dhun.

0: अभी आप प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे मुस्तफा हुसैन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: That was धुन played by प्रभात मुखोपाध्याय। He was accompanied on tabla by Mustafa Hussain. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studio of Akashwani Delhi. Also came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने

0: संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने बताया कि अब तक कुल दो व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि तीन लोग अब भी लापता हैं। अभियान कल फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन कीमिन मार्ग अब भी बंद है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एल मैच में अमरीका के ईस्ट रदरफोर्ड में पनामा का सामना इंग्लैंड से होगा। एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया का सामना घाना से होगा। दोनों मैच 2:30 बजे शुरू होंगे। इससे पहले मिस्र ने ग्रुप जी के अंतिम मैच में ईरान के साथ 1-1 से ड्रॉ खेलकर पहली बार फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ग्रुप जी के एक अन्य मैच में वैंकूवर में लिएंड्रो ट्रोसार्ड के दो गोलों की मदद से बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ಆಕಾಶವಾಣಿ ಹಾಸನ ಎಫ್ಎಂ ಕಂಪನಾಂಕ 102.2 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಕೇಳುಗರೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲಯದ ಇಂದಿನ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸಮಯ 11:05:16. ನಿಲಯದ ನಾಳಿನ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:55 ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಶ್ರೋತೃ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ರುಮಾನಾ ಜಿಎಸ್ ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್.